शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुनाए निकती एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारिक गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

दत्ता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है रफ़ी साहब का, ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाएं, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.pinfaunafm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की ऊपर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर। जी हाँ, आप चुन है फावन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन इन स्थानीय रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फेहे फेफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था, वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेकदी फाइफ से इवन तक नौशाद अली के साज पर। लता जी

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन त्वीन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाए मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेतिन त्विन शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

ये दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तू ऐसे कहाँ, देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज, फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप ही हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाज़त हो तो सुना दूँ। ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिल के सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिलिप अनुपमा में से निकाल कर नेकतीन सेस्तक और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: उठो गा।
1: चलो मुँह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाना है।
0: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार फिल्म अनुपमा में से निकाले हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेंसेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जहाँ आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर, क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार।

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत, एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनकी आँखों की तारीफ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चास साज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटे पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउंडी रेडियो। जी हाँ, फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए, माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस इस तरह से।

वाह क्या बात है लता जी। और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं, फिल्म झूला में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। हाँ तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

सुरेश वाधिकर जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं आओ मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से।

अरे दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है, ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रूना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रूना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका, फिल्म निका में से निकाले हैं।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है। जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज।

करते हैं प्यार समझ में आया। चली हो कहा देखो इधर, हम भी करते हैं प्यार समझ में।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेती ए ने फैफ्तः रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं निगेती द्रीन तख्त ए ने फैफ्तः से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगत इंद्रीन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निगत इंद्रीन तख्त का। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, अगर आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से हम पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

0: से तौबा।
1: हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है, बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका ख़िलाफ़ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैथी मुकेश, मैथी मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

0: मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दो होंठ हिले, ये गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: श्री रामायण के प्यारे श्रोताओं, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं रामायण का चतुर्थ कांड, किष्किंधा कांड।

श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्तजनों, जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनक दुलारे सीता को खोजते हुए शबरी द्वारा बताए ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे, तो ऋषिमुख पर्वत पर बैठे सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हे अंजनी नंदन हनुमान, देखो तो सामने से दो सुंदर पुरुष आ रहे हैं। तुम ब्रह्मचारी वेश में जाकर पता लगाओ कि ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं और किस हेतु से इधर आ रहे हैं। यदि ये बाली के भेजे हुए हो तो तुम मुझको संकेत कर देना, मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। तो भक्तों, तब हनुमान जी ने विप्र वेश में जाकर राम जी से उनका परिचय पूछा, तो प्रभु श्री राम जी

विप्र रूपधारी हनुमान जी को अपना परिचय दिया तो हनुमान भाव विवल हो उठे, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया, शरीर रोमांचित हो उठा, मुख से शब्द नहीं निकलते। फिर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भक्तों, इसी प्रकार होता है भक्त और भगवान का मिलन, सेवक और स्वामी का संयोग। दया सिंह श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को बाहों में पकड़कर उठाया और हृदय से लगा लिया। राम प्रभु ने हनुमान जी को और हनुमत ने प्रभु को जी भर निहारा। फिर हनुमान जी श्री भगवान से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले।

शंकर सुवन केसरी नंदन श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी एवं वानर राज सुग्रीव की मित्रता अग्नि को साक्षी करके कराई। श्री भगवान ने सुग्रीव को गले से लगा लिया। सुग्रीव को तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य मिल गया हो। पश्चात लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को श्री रघुनाथ जी का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सुग्रीव नेत्रों में जल भर कर बोला, हे नाथ, मैं अधिक तो नहीं कहता, परंतु मिथिलेश कुमारी सीता जी का आपसे मिलन कराने के लिए मैं और मेरे समस्त बंधुगण अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। आप धैर्य रखें और हे प्रभु,

जब वानर राज सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को धीरज बंधाया तब प्रभु श्री राम का मन शांत हुआ और उन्होंने विनय पूर्वक सुग्रीव से पूछा कि हे वानर राज, तुम्हारी बाली के साथ क्या शत्रुता है? बाली और तुम तो दोनों सगे भाई हो, फिर क्या कारण जो बाली तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया और तुम्हें बाली के भय से यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहना पड़ रहा है? हे सुग्रीव जी, तुम मुझसे कुछ भी मत छिपाना। तो भक्तों, तब वानरपति सुग्रीव जी बोले कि हे कृपालु, दीनों पर दया करने वाले, जड़ चेतन चराचर जगत के स्वामी, मैं और बाली सगे भाई हैं। हम दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, परंतु एक दिवस की बात

हे प्रभु, वह दैत्य बाली के बल को जानकर एक गुफा में घुस गया। तो बाली ने मुझको कहा कि हे सुग्रीव, मैं भी गुफा में जा रहा हूँ। तुम 15 दिन यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन में वापस न आया तो समझ लेना कि मैं युद्ध में मारा गया। तब हे दीनानाथ, मैंने एक माह गुफा के बाहर बैठकर बाली की प्रतीक्षा की। जब गुफा से रक्त की धारा बहने लगी तो मैंने समझा कि बाली युद्ध में मायावी के हाथों मारा गया, और मैंने अपने प्राणों के भयवश उस गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर रख दिया और मैं किष्किंधा लौट आया।

मेरे रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी, उस महापापी ने मेरी भारिया को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया है और मैं उसके भय से इस पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि श्रापवश बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। हे स्वामी, बाली में अप्रमित बल है और फिर उसे ये वरदान भी प्राप्त है कि जो उसके सामने आकर लड़ेगा उसका आधा बल बाली में स्वतः ही आ जाएगा। और हे रघुनाथ जी, सामने जो ताड़ के साथ वृक्ष आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति इन वृक्षों को एक बाण से गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। अतः हे अंतर्यामी, बाली को मारना बहुत कठिन है। तब करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी बोले,

तब प्रभु श्री राम जी बोले कि हे सखा सुग्रीव, अब तुम सारी चिंता त्याग दो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। इतना कहकर श्री रघुवीर जी ने ताड़ के सात वृक्षों और दुदुम्बे राक्षस की हड्डियों के ढेर को पल भर में गिरा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब सुग्रीव विनम्र वाणी से बोला, हे प्रभु, अब मैं धन संपत्ति राज्य आदि पाकर क्या करूंगा? प्रभु, अब तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका ही भजन करूं। तब श्री रघुवीर जी बोले,

जब सुग्रीव की आवाज सुनकर बाली क्रोध में आकर तीव्र वेग से दौड़ा तो बाली की पत्नी तारा ने बाली के चरण पकड़कर उसे रोक लिया और हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी सुग्रीव, जिनके बल पर आपको ललकार रहा है वे दोनों भाई कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे दोनों बल और तेज की सीमा है, आप उनसे वैर ना करें। तब बाली ने कहा कि हे तारा, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी है, उनके लिए तो मैं और सुग्रीव दोनों समान हैं, परंतु फिर भी यदि श्री राम जी मुझे मारेंगे तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, अर्थात उनके हाथों मृत्यु पाकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर बाली सुग्रीव से युद्ध

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में हार पहनाकर सुग्रीव को पुनः साहस बंधाकर बाली से युद्ध करने के लिए भेज दिया और स्वयं वृक्ष के पीछे छुपकर खड़े हो गए। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हो गया तो प्रभु श्री राम जी ने बाली को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। बाली ने जय श्री राम कहकर प्राण त्याग दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण एवं हनुमान जी को किष्किंधा भेजकर सुग्रीव का राज्य अभिषेक कराया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी एवं अनुज लक्ष्मण प्रवर्षण नामक पर्वत पर निवास करने लगे। वर्षा ऋतु आई और श्री राम जी के हृदय में

जब पवन कुमार श्री हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव को प्रभु श्री राम का कार्य याद दिलाया, तब सुग्रीव भयभीत हो उठा और हनुमान जी से बोला कि हे वीर हनुमान जी, भोग और विषयों ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया था। हे पवन पुत्र, अब जहां तहां वानरों के दल रहते हैं, वहां वहां हमारे दूतों को भेजकर संदेशा भिजवा दो कि एक पखवाड़े में सभी इस किंधा पहुंच जाए। तब हनुमान जी ने सब दूतों को सुग्रीव का आदेश सुनाकर रवाना कर दिया। तभी लक्ष्मण ने नगर में प्रवेश किया तो सुग्रीव अपनी पत्नी और युवराज अंगद को आगे करके लक्ष्मण

श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। ये माया आपकी अति कृपा से छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनिगण सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले कि हे सखा, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे जनक नंदनी सीता की खबर मिले। उसी समय वानरों के झुंड वहां आकर एकत्रित होने लगे।

बिना नरेश महाराज सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, जामवन एवं हनुमान आदि वीर योद्धाओं को बुलाया और बोले, हे वीरों, आप सभी चतुर एवं बलशाली हो। तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और मन, कर्म, वचन से प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करो। सुग्रीव के वचन सुनकर अंगद, नल, नील और जामवंत आदि योद्धा श्री राम को सिर झुका झुका कर चले। तब श्री राम जी ने पवन कुमार हनुमान जी को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने हाथ की अंगूठी देकर बोले, हे हनुमान, यदि सीता से भेंट हो तो उन्हें मेरी यह स्वर्ण मुद्रिका देकर

श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, जामवंत जी ने पवन पुत्र अंजनीलाल श्री हनुमान जी को जब ऋषियों के श्राप और हनुमान जी का अपना बल भूल जाने की कथा सुनाई, तब हनुमान जी को अपना बल याद आ गया और उनका शरीर अति विशाल हो गया। श्री हनुमान जी बोले, हे जामवंत जी, मैं इस समुद्र को पल भर में लांग सकता हूँ। रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत समेत लंका को उठाकर यहाँ ला सकता हूँ। अब आप ही मुझे उचित आदेश दें। तब जामवंत जी बोले, हे हनुमान, तुम केवल सीता जी की खबर लेकर और धीर बंधाकर वापिस आ जाना। शेष कार्य श्री रावणाज स्वयं कर लेंगे।

मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम के उपदेश और उनकी कही हुई बातों का सम्मान पूर्वक आचरण में लाने से हमारा जीवन भी मर्यादा से भरेगा और हम भी प्रभु को पाने के अधिकारी बन सकते हैं। कथा हमें प्रेम त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। इसीलिए बार बार हमें श्री रामायण जी का श्रवण करना चाहिए। तो चलें हम शुभारंभ करते हैं रामायण का पंचम कांड यानी सुंदर कांड।

मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तों, अंगद जामवंत आदि को धीर बंधाकर और प्रतीक्षा करने के लिए कहकर केसरी नंदन श्री हनुमान जी सबको मस्तक झुकाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान करके हर्षित होकर चले। सागर के तट पर एक सुंदर एवं विशाल पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल ही खेल में उस पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और बारंबार रघुवीर जी का सुमिरन करते हुए बलवानों के बलवान, ज्ञानियों के ज्ञानी, भक्त शिरोमणि मात अंजनी के लाडले अत्यंत वेग से उछले। बोलिए श्री राम भक्त बजरंग बलिहार।

जब सर्पों की माता सुरसा को महावीर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य हेतु जा रहा हूँ। जब मैं प्रभु का कार्य पूर्ण करके वापस आऊं, तब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। परंतु सुरसा ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और अपना मुंह योजन भर फैला लिया, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। तब जैसे जैसे सुरसा मुंह फैलाती गई, हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाते गए। अंत में जब सुरसा का मुंह 100 योजन फैल गया, तब श्री हनुमान अपना शरीर अति सूक्ष्म करके सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल गए।

मेरे भक्तों, लंकिनी हनुमान जी के एक ही प्रहार से लहू लोहान होकर भूमि पर गिर पड़ी। पुनः होश आने पर लंकिनी बोली, हे कपिराज, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब राक्षसों का अंत निकट जाने। हे कपीश्वर, आज मैं धन्य हो गई जो श्री राम जी के दूत के रूप में आपको इन नेत्रों से देख रही हूँ। हे वानर राज, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश करके उनका कार्य पूर्ण किया।

प्रेमी भक्तों, फिर विभीषण जी ने हाथ जोड़कर विप्र रूपधारी श्री हनुमान जी से पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आप या तो प्रभु श्री राम जी के भक्तों में से कोई हैं, अथवा स्वयं श्री राम जी हैं। आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, कृपया अपना परिचय देने की कृपा कीजिए भक्तों। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा समझाकर अपना नाम बताया। तब विभीषण जी भाव विवल हो उठे और बोले कि हे पवन पुत्र, मैं यहाँ लंका में इस प्रकार रह रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच जिभ्या रहती है। हे हनुमान जी, मेरा तामसी शरीर होने से भजन तो होता नहीं, फिर प्रभु श्री राम जी क्या मुझे अनाथ जानकर कभी कृपा करेंगे?

सज्जनों, फिर हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपकर बैठ गए। उसी समय मंदोदरी सहित लंकाधिपति रावण अशोक वाटिका में आता है और काल के वशीभूत होकर सीता से अपनी पटरानी बनने के लिए कहता है। अनेक प्रकार के प्रलोभन देता। जब माता जानकी उसे प्रभु श्री राम जी के बल की महिमा बताती है तो वह क्रोधित होकर अपनी खड़ग उठाकर जानकी जी को मारने के लिए दौड़ता है। तब मंदोदरी उसे समझाती है तो रावण सीता जी को एक महीने का समय देकर वहां से चला जाता है। तब रावण के जाने के बाद सीता जी त्रिजटा नाम की राक्षसी से

प्रभु भक्त आत्माओं, अंगूठी को पहचान कर सीता जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु मन में हर्ष और विषाद के तूफान चलने लगे। प्रभु श्री राम जी की निशानी मिलने से सीता जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु फिर सोचा कि ये अंगूठी यहाँ किस तरह पहुंची। सीता जी विचार करने लगी कि रामचंद्र जी तो अजय हैं और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती, फिर यह मुद्रिका यहां कैसे आई। फिर सीता जी बोली, हे भाई, जो इस मुद्रिका को यहां लेकर आया है वो सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तो भक्तों, उसी समय श्री हनुमान जी वृक्ष उतर कर सीता जी के सन्मुख प्रकट हुए।

मित्रों, वानर स्वभाव से तो चंचल होता ही है। चहुं ओर सुगंधित फल देखकर हनुमान जी को भूख लगने लगी तो हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर फल खाने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछलने कूदने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। जब वाटिका के रखवाले उन्हें रोकने लगे तो वीर बजरंगी ने उन्हें खूब मारा, खूब मारा। कुछ राक्षस जान बचाकर भागे और रावण की सभा में जाकर वहां का सब हाल बतलाया। तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय

हनुमान जी ने अक्षय कुमार को एक ही मुट्ठी के प्रहार से मार डाला। तब राक्षस राजा रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका में भेजा।

सज्जनों, तब श्री हनुमान जी बोले, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जो सूर नर एवं धर्म की रक्षा की हेतु नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली जैसों का वध कर डाला और जिनकी पत्नी को तुम छल से हरण कर लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का छोटा सा दूत हूं। हे रावण, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाए, परंतु देह तो सबको प्रिय है। जब तुम्हारे राक्षस मुझे मारने लगे तो मैंने भी उन्हें मारा। हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूं कि माता जानकी को प्रभु श्री राम को सौंप कर प्रभु से वैर त्याग दो और उन्हीं का सुमिरन करो।

फिर भक्तों, रावण ने विभीषण की सलाह मानकर अपने राक्षसों से कहा कि हे वीरो, बंदर की ममता अपनी पूंछ पर होती है, इसीलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। इतना सुनकर हनुमान जी मुस्कुराने लगे और अपना शरीर अत्यंत विशाल कर लिया। जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी अति लघु रूप बनाकर एक भवन से दूसरे भवन पर कूद कूद कर समस्त लंका में आग लगाने लगे और इस प्रकार विभीषण के घर को छोड़कर बाकी सारी लंका को जला डाला और फिर समुद्र में कूदकर पूंछ की आग बुझाई और अशोक वाटिका में माता सीता के सन्मुख आकर हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिसे मैं प्रभु श्री राम को दिखा सकूं।

प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त बनो। प्रभु श्री राम जी ने सीता जी की विरह व्यथा हनुमान जी के मुख से जैसे ही सुनी तो उन्होंने सुग्रीव को कहा कि हे वीर सुग्रीव जी, अब अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई की तैयारी करो और यहां से लंका की ओर प्रस्थान करो। इस प्रकार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और समस्त वानर दल ने किष्किंधा से चलकर समुद्र के किनारे डेरा डाल दिया। उधर लंका में जैसे ही रावण को श्री राम और उनकी वानर सेना के आगमन का समाचार मिला तो उसने अपने सचिवों से विचार विमर्श आरंभ किया। उसी समय रावण का अनुज विभीषण भी राज्यसभा में आ पहुंचा और रावण को यूं समझाने लगा।

जाको विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। इसी प्रकार रावण की भी मति मारी गई है। आज उसे नीति और ज्ञान की बातें नहीं सुहाती। जब विभीषण ने उसे नीति समझाकर कहा कि सीता को वापस करके श्री राम का भजन करो, तो उसने क्रोधित होकर विभीषण को लात मारकर अपमानित करके सभा से बाहर कर दिया और विभीषण रामादल की ओर चल पड़े। जो ही विभीषण वहां से चले तो रावण समेत सभी राक्षस एवं लंका नगरी आयुहीन एवं ऐश्वर्यहीन हो गई। विभीषण आकाश मार्ग से समुद्र पार करके प्रभु श्री राम जी की शरण में पहुंच गए। दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर विभीषण जी बोले।

भक्त आत्माओं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने विभीषण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा तो विभीषण जी बोले, हे प्रभु, वैसे तो आपके एक बाण से ही करोड़ों सिंधु सूख सकते हैं, परंतु प्रथम उपाय विनय ही है। समुद्र आपके कुल गुरु हैं, अतः इनसे विनती करके रास्ता मांगो। तब श्री राम जी समुद्र तट पर कुश का आसन बिछाकर हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके समुद्र से प्रार्थना करने लगे। परंतु जब 3 दिवस बीत गए और कोई हल नहीं निकला, तब श्री रामचंद्र जी को क्रोध भर उठा और श्री रघुवीर जी बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं एक ही बाण से समुद्र को सोख दूंगा।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अतिशय प्रिय भक्तों, प्रभु राम की लीलाएं भी अत्यंत चमत्कारी है। जिस भेद को प्रभु जानते थे वो समुद्र से पूछ रहे हैं। प्रभु श्री राम ने हर स्थान पर मर्यादा का पालन किया है, कहीं भी मर्यादा भंग नहीं की, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और प्रभु का वरप्पन देखिए कि नल और नील को श्री भगवान ने कैसी बढ़ाई दी। करुणा के सागर ने किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखा। ऐसे दयालु कृपालु सुखदायक मैं दिन रात भजता रहूं। जय श्री राम।

प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु राम के कृपा से मैंने आपको श्री सुंदर कांड का श्रवण कराया और आपसे यही आशा है कि इस सुंदर कांड के ज्ञान को लेकर आप अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाएं। जय श्री राम।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरुमि देवा सर्वकार्यशु सर्वदा।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं तिक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है, लाचार है, भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनके घर से नया शिशु ने जन्म लिया है परिवार में, तो उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनके जन्म घाट आज जन्मदिन है, उन्हें बहुत सा बधाई भी दिया जाता है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी की ओर बढ़ने के लिए, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और हर बार की तरह इसको भाई दोहरा देता हूं, महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहे थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो मां सरस्वती को भूलना नहीं। बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले माँ सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं मेथफकांसी, तो मैं आपको हार्दिक से स्वागत करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि ये देशों में एक देश है जिसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। ना सिर्फ अपने परिवार के साथ, पर यहां जितने भी लोग रहते हैं हॉलैंड, अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक देश जहां कितने सारे मंदिरों है, सबसे ज्यादा वही जहां जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं और सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते कहां हैं, कहा जाता है कि तनहाक शहर, को मिलेंगे मंदिरों जैसे देव मंदिर खासलान में, जो हर रविवार को और होते दाखों पे लगते रहते हैं। जरूर ये कहना चाहूंगा कि दर्शन करके जाना, जो हर रविवार 2 बजे से 5 बजे तक रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा जाता है। राधे कृष्ण मंदिर यानफा हो इस रात तनहाक शहर से, कार्यक्रम हर मंगलवार को 5 बजे से 8 बजे तक रहता है। इसी प्रकार से मंदिर सेवा धाम तनहाक शहर, राम मंदिर तनहाक, शायद आप रोतदाम शहर में रहते हैं तो वहां भी शिव मंदिर नौ समान सरात, हर रविवार को सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, इसी प्रकार से राम मंदिर रोतदाम, नंदा देवी मंदिर, अगर आप सुतमेर के निवासी हो तो सुतमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो प्रिस्मालान में है, सुतमेर में हर मंगलवार को, और आप जा सकते हैं वहां का कार्यक्रम जो 6 बजे से 9 बजे तक होते हैं।

कहा जाता है कि अगर आप दूर शहर का निवासी हो, जैसे कि आलमीर, तो श्री विष्णु मंदिर, जो यूरोपा का और सबसे सुंदर मंदिर कहलाते हैं, लोग दुनिया के अन्य देशों में से आकर के वहां दर्शन करते हैं। आलमीर का श्री विष्णु मंदिर, जो कि हर रविवार को 2 से 6 बजे तक

इसी प्रकार से हम लोग का देश में धार्मिक स्थानों भी एक दो है, कुछ ऐसा संस्थाओं भी है कि हमारे पुरखों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि एकता, एक संस्था जो 50 साल से भी ज्यादा

संस्था जैसे हिंदू परिषद नीदरलैंड, संस्था जैसे हिंदी परिषद नीदरलैंड जो कुछ 40 साल से भी ज्यादा एक संस्था जहां पर हिंदी का आपको सिखाया गया, लिखाया गया, पढ़ने पढ़ाने एक संस्था जो गौर के साथ कह सकते हैं कि मेयर दान 12,000 सर्टिफिकेट uitgeschreven. सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं. एक देश जहां पर पार्थिव लिंगम पूजन भी किया जाता है हर गर्मी महीना में. उसी में ये मैं जोड़ देता हूं, गर्मी में जब श्रावण मास आता है तो कितने मंदिरों में श्रावण मास पूजा खूब विधि विधान से किया जाता है, जरूर उसमें भाग लेना. सुनने वालों, मैं आपके साथ जुड़ा हूं सुबह का औखतंत भजन प्रोग्राम जहां से दनहाग मैके स्ट्रात सेस हिंदू बासस स्कूल फाउन फरीनखिंग अलगमीने हिंदू ऑनरवाइज की ओर से सभी बच्चों, सभी सदस्यों, सभी ऑनरवाइजर्स और सभी दिरक्षी लेदे के ओर से एक सुंदर सा भजन की ओर हम बढ़ते हैं.

इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़े होते हैं। ये सुंदर सा भजन जो हम सब चलाए गए हैं फाहुन सोल जो तनहाख में केंसरात नम्रोसेस हिंदू बासस सोल फाहुन फरीनखिंग अलखमीन हिंदू अंदरवेश की ओर से।

कहते हैं कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज अपना समय पे भी ध्यान देना। क्योंकि समय जिसे हम जानते हैं काल से, बहुत बलहारी कहलाते हैं। रुकने वाले नहीं हैं। उसे आप रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। जिसे हम कहते कि हम उसे पिछाड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। हमारा अगला भजन को स्पॉन्सर करने वाले हैं लिफोर्नो मेनकंदम हुक इंदिरा गांधी वेख श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर, जिनके अगर आपको वहां मालूमात करना है तो भाई सुहास महावीर से जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। जिनका तार का नंबर 00590 5 6 5 8 7 7। सुंदर सा भजन उनके ओर से।

Suriname, Livorno, Menkendam, Hoek Indira Gandhiweg, Sri Bhaktaraj Siv Parvati Mandir, के ओर से ये सुंदर सा भजन को और चलाया गया।

दोस्तों कहते हैं कि ये रिश्ते भी अजीब होते हैं। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते हैं और बिना धोखा से खत्म नहीं होते हैं। विश्वास है

जरूर ध्यान देना, अगर कोई विश्वास आप पे रखते हैं। नीदरलैंड्स में ये कहा जाता है, वरा के मार एन किर क्वेत, आप खुद समझदार है और समझ गए होंगे

अगला भजन जो रोटरडम होफ्लीट टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात 46 से सरस्वती माता स्कोलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लाइडिंग फंड पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से।

सुंदर सा भजन का स्पॉन्सर करने वाले रोटरडम होफ्लीट टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉकमाकर स्ट्रात 46 से श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लाइडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से ये सुंदर सा भजन को हम सब सुने।

जिनके नाम से रातों में भी उजाला हो जाए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपको सपनों में भी आए और कृपा बरसाए। प्रभु श्री राम, जय श्री राम।

चेहरे की औरों की रोशनी में मुस्कुराओ, जब किसी और का दीपक जलता है तो अंधेरा नहीं बढ़ता है, रोशनी ही फैलती है।

जो दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, वे अपने भीतर की दीपक को प्रज्वलित करता रहते हैं।

सफलता समीप्त नहीं होती। सफलता समीप्त नहीं होती, वे एक दीप से दूसरे दीप तक जलती ऊर्जा है। हमारे अगला भजन जो कि फाउन के डायरेक्शन और क्रू के ओर से चलाया जाता है, हमारे डायरेक्टर कुमार घेराव जी, जॉनी सुरुजबाली जी, शांता खेमाई जी, रजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराई जी, विजंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, श्रीमान सुरेन जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस्ट, संजय करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरो रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी और राजेंद्र सिंह जी की ओर से एक सुंदर सा भजन।

ए रब, मेरे दुआओं में असर इतना रहे, मेरे चाहने वालों का दामन हमेशा खुशियाँ से भरा रहे। ये सुंदर भजन जो चलाया गया फाहुन के दिरक्सी और क्रू के ओर से, श्रीमान कुमार घेराव जी, जॉनी सुरजबाली जी, शांता खेमाई जी, रजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराय जी, विजंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, सुरेंद्र भगवान जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस जी और संजय, करण सिंह जी, गंगा जी, यूसेफ जी, मफरू रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी, राजेंद्र सिंह जी और हैन के ओर से ये सुंदर सा भजन जो चलाया गया। आशा ये रखता हूँ कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए। यहाँ से कार्यक्रम जो दूसरा मोड़ दिया जाता है, सभी को एक शुभ दिवस।

मैं चली रफी जी और लता जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने सुनवालो। दोस्तों एक अच्छे और एक बुरे दिन, एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, वे है कि आपके नजरिया, आपके नजरिया बस यही अंतर है। और उस पे हो सके तो जरूर काम करना, क्योंकि बुरे दिन बताकर नहीं गाते हैं।

तो कहा जाता है कि भरी बरसात में तो पी लेने दो और हमें जीने दो, पर ये बात में मत रहना, क्योंकि कहा गया है कि आज तक किसी जो पीने में दिल रखे है क्या कभी छोड़ पाए है। तो दोस्तों, कुमार शानू और रूप कुमार के आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, और देखा जाए कि आज एक शुभ दिवस आपके प्रस्तुत हुए। और ये मत भूलना कि अगर आप जो फिल्म शोले भी देखे होंगे, तो उसमें जब अमिताभ बच्चन अपना दोस्त धर्मेंद्र जी के लिए उनके हाथ मांगने के लिए मौसी के पास पहुंचे, तो मौसी से सब अच्छे अच्छे बातें और कर रहे थे अपने मित्र के लिए, पर उसमें एक संदेश जो जावद अफ्तर का और सलीम जी का लिखा हुआ डायलॉग्स में से मौसी जी के आवाज़ में हम सब सुने कि आज तक किसी का जुआ और ना किसी का दारू छूटा है। तो इस पे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दारू पीने वाले भी हर बार अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ने की भी कोशिश में रहते हैं, तो औरों को बार बार सुनाते रहते हैं कि भाई मैंने तो छोड़ दिया, और चाहे आप उस पे ध्यान ना दो, फिर भी वो आपसे इसी इशारा करते रहते हैं कि मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों, एक अगला सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

और रहमान की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। मसा कली जो फिल्म में काम किए हैं अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर, फिल्म दिल्ली 6 से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और ये कहना चाहूंगा कि क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। क्योंकि सलाह देने के लिए तो बहुत होते हैं, पर खुश रहने की वजह बहुत कम है।

की हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जैसे कि अभी आपने सुने कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है।

पा लेने के बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही जिंदगी का सफर है दोस्तों। और जो कभी कुछ आप पा गए,

खोने का डर, क्योंकि कहा गया है पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर। हम इसी में लगे रहते हैं, बस इतना ही जिंदगी का सफर कहलाते हैं।

नुसरत और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी।

सिंह चड्डा फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और जो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस अपना आवाज़ दिए, फिल्म में काम किए हैं आमिर खान और करीना कपूर।

दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए अनेकों तरीका क्यों ना हो, जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, और क्यों ना अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, तबला स्त्रन फिया इंटरनेट। दुनिया के हर एक देश में इसे सुना जा सकता है।

कहते हैं कि जीवन में एक बात तो तय है, जीवन में एक बात तो तय है कि हमारे अनुसार तय कुछ भी नहीं है, और जो तय है उसका हमें आभास भी नहीं है।

तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। नाइन्टीज के रोमांटिक सॉन्ग से निकाला गया।

अपना बनाने की कसम खाई है, और जो कसम खाया जाता है तो ऐसा वैसा चीज नहीं है जिसे शायद आप सोचे कि कसम खा लिए हैं और चलो उसे भूल जाना, क्योंकि ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। एक चीज तो जरूर है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारी उम्र। धीरे धीरे जो खत्म हो रहे हैं वो हमारे उम्र है। आज कुछ पुराने गीत और कुछ 90s के रोमांटिक सॉन्ग के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहे। यही आशा लेकर कि जरूर कुछ न कुछ इसमें से आपको अच्छा लगे होंगे।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपका यानी आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप है, जिस हाल में भी आप है, आप सभी को भी याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।

0: बुलाए और मैं ना आऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग सिलेक्शन मेरे हिस्से के प्रोग्राम में। कॉलेज गर्ल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं नहीं चाहिए रंग महल ना धन दौलत की शान।
1: Alexander Aert, Corporate Finance.

फ्रॉम द मूवी कॉलेज गर्ल्स अभी आप सुन रहे थे नहीं चाहिए रंग महल ना धन दौलत की शान। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, नमायती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं और म्यूजिक इस गीत पर दिए है शंकर जय किशन जी। चलिए मिलकर सुनते हैं जाओ कहाँ बताए दिल।

आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: रही हूँ।
1: मेरे पास बर्फीन फजूल बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

ये फिल्म का नाम इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। तलत महमूद जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं मेरा करार ले जा, मुझे बेकरार कर जा, दम भर को प्यार कर जा।

अभी आप सुन रहे थे मेरा करार ले जा, तलत महमूद जी आपको सुनाने वाले थे। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, दमाई थी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी अनजान राहें।

अनजान राहें हैं फिल्म का नाम इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, रमायती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। समझौता खामोशी कर लो,

अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में समझौता खामोशी कर लो, द टाइटल फ्रॉम द मूवी समझौता से हमने पेश किए हैं। मैंने बुलाया और तुम आए, अब दिल चाहे क्या। लता जी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं, सुनने वालों

फ्रॉम द मूवी अपने हुए पराए से अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में मैंने बुलाया और तुम आए। द माइटी मुकेश आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी चंद्रमुखी से हम पेश करते हैं द टाइटल।

नए निका चैन चुरा कर ले गए, कर गई नींद हराम। चंद्रमा का मुख था उसका, यानी चंद्रमा सा मुख था उसका, चंद्रमुख ही था नाम। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी चंद्रमुखी। लोफर है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं नानी बेत्सी कल्लू जी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं।

आज मौसम बड़ा बेईमान है, फ्रॉम द मूवी लोफर से हमने पेश किए है। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे सुनने वालों, और ये गीत खास करके हमने पेश किए है नानी बेट्सी कल्लू जी के वास्ते। प्रोग्राम को आगे में बढ़ाते हैं, और आदमी और इंसान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ नीले पर्वतों की धारा।

नीले पर्वतों की धारा भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी आदमी और इंसान से हमने पेश किए हैं, आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में महेंद्र कपूर जी। दोनों किसी को नजर नहीं आए तो क्या करे भाई, क्या करे बताओ क्या, चल दरिया में डूब जाएं।

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो देखेंगे तो

दोनों किसी को नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाए भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्रेम कहानी से हमने पेश किए हैं। साथ ही है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है, द माइटी मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी यानी सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं।

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। फ्रॉम द मूवी साथ ही से हमने

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मां खेंता वेग 259 बाय ऑटो वर्हूरबेड्रिव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf A.

फ्रॉम द मूवी इंडियन से हमने पेश किए हैं जाना तुझे जाना, तो जाना मैंने ये। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो गीत का बोल है ये समा ये नज़ारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये समा ये नज़ारे, बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ढाई अक्षर प्रेम की। सरासा हम देखें तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। ये हवाएं सूफ में तेरी गुम हो जाए, अलका याग्निक और शान आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बस इतना सा ख्वाब है।

फ्रॉम द मूवी बस इतना सा। हाँ भाई, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाज़ में। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किसी से चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोई नूर की तरह होता है। फ्रॉम द मूवी क्यों हो गया ना, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आओ ना, उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं उदित नारायण के साथ में साधना सरगम जी।

अभी आप सुन रहे थे आओ ना। नसीब के खेल भी अजीब होते हैं, सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं। अब तेरे दिल में हम आ गए तो, फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे अब तेरे दिल में हम आ गए, तो अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं। कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, लेकिन सदा यानी लेकिन सजा भी वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे हम। उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। आ कहीं दूर चले जाए हम, फ्रॉम द मूवी लावारिस से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आ कहीं दूर चले जाएं हम, फ्रॉम द मूवी लवारिस से हमने पेश किए हैं। अवकाय याग्निक के साथ में उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है फ्रॉम द मूवी सलामी से। आप सुनेंगे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।

अभी आप सुन रहे थे चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। क्यों उदास है ऐ इंसान, तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बेहतर होगा। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, द टाइटल आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी हम तुम्हारे हैं सनम।

रखे हैं आप सभी के वास्ते, कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं ये कैसी मुलाकात है। चलिए मिलकर सुनते हैं

अभी आप सुन रहे थे ये कैसी मुलाकात है, मैं किस कुमार में हूँ। कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आ अब लौट चले। मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह, फ्रॉम द मूवी प्यार जिंदगी है, अभिजीत और अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिलबर दिलबर फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, और आपको सुनाने वाले हैं अलका याग्निक जी।

अभी आप सुन रहे थे दिलबर दिलबर अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम। फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है, गीत का बोल है दुपट्टा मेरा। अनुराधा श्रीराम जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दुपट्टा मेरा, और इस गीत के बाद ये सॉन्ग हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी धड़कन से आप सुनेंगे नाना करते प्यार तुम्हें से कर गई।

फ्रॉम द मूवी धड़कन से हमने पेश किए हैं। वही आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। निकम्मा किया इस दिल ने, फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा।

शान और संजीवनी भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्या दिल ने कहा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। शर्ली जी जब कभी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली के वास्ते, झांझरिया उसकी खनक गई। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कृष्णा से।

अभी आप सुन रहे थे झांझरिया मेरी छनक गई, और ये गीत हमने पेश किए थे शिरली के वास्ते, जबकि शिरली भी ये प्रोग्राम को सुन रही है। बांध मेरे पैरों में पायलिया।

अभी आप सुन रहे थे बांध मेरे पैरों में पायलिया, हैया हो क्या मस्ती, ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के साथ में उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अलबेला से आप सुनेंगे।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए, हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल नेक्स्ट टाइम।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

वांछित ये है हमारी जनता। न्यूज तो हम आप लोग को सुनाते ही रहेंगे, हमारा देश में क्या क्या हो रहा है और देश में क्या क्या हो रहा है। तो अब देखा जाए भैया, जैसे बताए गए हैं हम, जैसे अभी हम बताए गए हैं कि सूरीनाम देश में पैसा के जो है, पैसा के फरफाल्स हाइट हुए हैं और फरफाल्स हाइट हुए हैं तो अपने के पैसवा घुमा उमाए के देख लियो हमारे जनता, देख लियो कैसे बात है। फिर दिस गयाना वाला अभी बताए रहे उ चले लगल है, बौद्धो मोडम सब ठोंक ठाक के देख चुकल है, बोले है कानावाई के जो जो फेर स्टॉप रहा, बोले अब उ चले लगल है। तो ये बातचीत है हमारे जनता। अब देखो भैया, एगो आदमी के सिपाही पकड़े मान आन खहोदन फॉर याखन इन बबाउद कम, जहां ना चाही शिकार खेले की भैया गैला जंगल में, शिकार खेले की कहां गैला मंगलवार के बात है, फेफम फिर तक यारख शिकारी हां ना दर मेलिंग वास खमाक फंस कोतन अंदर हेनार वेख के बात है, बिनंद बबाउद कौम फॉर नोमन वर्ड दर द मन बीसख वाद में ने यख अपन कपुआ, भैया कपुआ के दागत रहा और बिनंद बबाउद कौम जहां आदमी रहत रहा। और बताएंगे फॉर नोमन वर्ड की अदमिया एगो कपुआ कापी बारा वार बेई है ट्वेस कोतन अपे दीर सो हेवन खलोस। तो बोले नार द आन लेने फन मेल ने ही रूफर सिपाही जो हुआ पहुंचल है, तो देखे भैया हुआ दागी से है वापन वार फोर सीन फन खल्दख और पपीर पौरदारम बोले हुआ पे और बोले हैगा ने साल ओवर फेरद तो फन मान वर्ड नंबर सीरीज की अपु बंदूक की पाई की ना पाई ओ खबितवा जो रहा, बोले बने का बोले है विलेन बबाउ द कॉम में रहा हमारी जनता जहां पे आदमी रहे है। तो हुआ तो कहना मांग तक मैं भैया देखिस कपुआ देखिस गोज भैया, तो बोले ना जाए लाग ले यार मसालावा में हमें छौके के है तो ऐसे बतिया है नानी, जब मसाला आदमी जे सोचे तो सोचे आप का यार देखल जाए बबाउद है कि बबाउद ना है, यहू से बबतिया है। तो 18 बरिस के लड़का फ्री नंबर ऑफ सीरी आंखें बांची हुए भैया बप्पाल गैल ओकर संगे बेटवा के लेके गैल है जाल गिरावे भैया गैल मछरी पकड़े। सूरीनाम देश में बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी है शायद है सूरीनाम देश में और इतना ज्यादा गर्मी है बोले फिर तक खराद हो जा है। तो ये आदमी बप्पा और ओकर बेटवा गए ले और बोले है गो कनाल है गो गुतरो है गा फ्रीडम ब्यूरोक्रेसी आमे, तो जो हुआ गए है तब मछली पकड़ा तरह बेटवा बोले है अपन बाप से बोले हमें बड़ी गर्म लगे, बोले हमें इफ पौड़ ली बस लुंडवा हम पानी में कूदल भैया कभी ना निकल के आज पल बहुत दुख के बात है। तुन है हेट वाटर इन हिंग ओम आफ्त कुलन कोर्दाना मेरे से निफाल दत है नीत में शेख बारवास ओन दांस अन सुख अक्सी लुकते हैं नीत ओम हम तो फिंदन और सिपाही उही माइल है दैकर्स ब्रांतवेर गईल है गा। तो उकर लेखाम संझा आफों तीर संझा के निकारी से तब तो उसी कर मर जाए भैया। तो ई बड़ा दुख के बात है। तो सुनील दत्त गजरी भी कर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। तो सूरीनाम के जनता कम ही बताई है कि आप लोग वहां पर पौड़ी उड़ी भैया बचाई के। अब देखो हम जाएला फीस प्रेसिडेंट रेसलांत के ओर हम जाएला नानी। तो रेसलांत काम बोले भैया एक बड़ी बड़ी नाम आदमी बोले बहुत सलाम फैफी पिया एन दुनिया भर की चीज के बोले हैं और ये एनपीएस के प्रेसिडेंट गेगरी रेसलांत के बातचीत हुए जनता। द टू नाम द प्रॉब्लम में द स्ट्रोंग फोर्सिंग इन रिसेंट अनकोंड के फन लात हैकिंग दो दिन

कारण कि जब स्त्रोम गिर जा भैया तो उसे कहा बोले हैं अपन घर अबे अंजोर कर सके हैं। हम आप लोग को एक गीत सुनाना चाहते हैं और ये गीत कौन सा है, दिल कहता है, खुयानी से बॉलीवुड फैशन थेगा देवरा राखा।

En dat was wel een hele goede mens. Dat heb ik wel genoten. Ik ga vanuit jullie ook. Toe je ego dil kehta hai. Guyane se Bollywood fashion hai. Ye agar ja aap sunna chahte to sun sakte hai. तो दोस्तों एक औरत भैया आयला सीता गौरी चरण गजरी भैया गया है सुनील गजरी भैया गया हम सबको हम बहुत प्यार देते हैं स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में तो बातचीत ये हो रहा है जनता जो आम फकांसी से जाना घूमने को फकांसी प्रियुदय है तो इधर उधर जो जाना तो ना कुछ पकड़ के जेबी एबी में धल्ले भैया एक औरत गैला फकांसी और फकांसी गैला फकांसी सु आवत रहा भैया और जब प्लेनवा पे रुकल बोले अब यशवा पहले तो यशवा जब पहली से भैया तो ओके कुछ काट ली से भाई ये आयल है ख्रिक्स एलान से आयल है ख्रिक्स एलान कोस से और जब लंदे भैले फ्लिकते हुए तो बोले अब हम पर यशवा पहली और यास के जेबी में दुगो स्कॉर्पियन रहा नानी अब देखो कौन चकल सुवे है बस स्कॉर्पियन ही औरतिया के काट लेस भैया काट लेस ब्रांडवेयर फ्रॉम डिसेल्डोर्फ वेयर द फ्रॉ ईस्ट ओके मेजी से हेल्प मिलले लुफ्टहाफन में औरतिया बोले हमारा मुड़ी पिरा है और जहां काटी से सोचे बरैया रैया काटिस प्यार मार ब्लेफ अनस्प्रिग मान डिसेल्डोर्फ के सिपाही इनफिशियर से कौन है ले गएगा और बोलेगा आयल स्पेशल टीम आयल है तो ई दोनों स्कॉर्पियनवा के पकड़ी से रेप्टिल एक्सपर्ट फ्रॉम ब्रांडवेयर वेयर नाद लुफ्टहाफन गस्टूर्ड ओमे दीर veilig te vangen en de soort vast te stellen. Het bleek te gaan om een gele 5-streep-schorpioen, ook bekend als de gele Middellandse zeeschorpioenen. Deze soort behoort tot de giftigste schorpioenen ter wereld. De bichi bole na, midden na een schorpioen, ke bole bichi kaart lezen or tiake. Or sabse gevaar wada raha. Het gif bevat krachtig. Or bole he ook zenuwe letsel borega sab antastikker deze. Volwassen doorgaans is niet dodelijk, maar kan wel hevige pijn en andere klachten veroorzaken. Bole ITII schorpioenen mille he Noord-Afrika me. Turkije mee, Arabische schiereilanden mee. Hoe het die precies in de jas van de vrouw terechtkwam, is niet vastgesteld. De vrouw was kort voor de incident vanuit Kos naar Duitsland gevlogen. De gevangen scorpioen is na de incident overgebracht naar de reptielen. Dus na Iorotia pakkerke derela, maar bij Patana Kaiseto, Yasuma met Chelge, bhaiya. Jeba, cheat heb deko, bhaiya, ham jaila Turkije mee. Turkije के तुलन जानो है तो Turkije के भैया हुआ के बोले है Turkije wil arrestatie Netanyahu om misstanden tegen de menselijkheid Turkije बोले Netanyahu के चाहिए पकड़ के बंद करे के तेरे के मिनिस्टर बोले है यूसीसी से मार भैया नेतान्याहू के मुड़ी पे दोनों हाथ है त्रुंब के ओके कैसे छियो deze vloot van 50 boten wilde afgelopen mei voedsel en hulpgoederen naar de Gaza-strook brengen, maar Israël verhinderde daardoor de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvaarden te arresteren. Onder hen waren ook 3 Nederlanders mensen. Dus Jatra Khaikpani bhaiya boordse huan pe kabule Gaza me. De Israël, ook het dak is op Armeen ke, en kabule arresteer kalese. Hamare mousi, hamare nani loon. To hamare khayal se ya hi ghanta ho gaya hai, hamare samachar ko. हनरित रामदीन का बोले फिर यहाँ पे के पार्लियामेंट बोले है जो मिनिस्टर फ्रॉम बैतलान साके है गारे मेल फिन बाउफाक बोले हैं बोले वो अपन को फरवाना खोले जो बैतलान से आवे मतलब वो टेमना है वन अबे को फरवाना खोले वही को फरवा ली के बोले वो खाली दुनिया के शायर करे भैया और रिसल्टात को सुनाई बन करे होकर उमदाटो का नाम हैगा मिनिस्टर फ्रॉम बैतलान से साके फ्रॉम इंटरनेशनल हैंडल एंड सामान वर्कन और बोले तेईस द फोर करके प्रयोग जब हम लोग के मिनिस्टर
जात रहा राम नहीं तो बोले बड़ी क्रिटिक ले फर कर रहा बोले रेस खतरा फाने मिनिस्टर अब बोले न्यू ब्लैक फोकस द फिया पियर दैट बोफा यूज द द गेने इज दिस स्टेज आउटलैंडिश इज और बोले मेल्विन बोफा वाज द मैन दी ऑलवेज आउट द स्टूल गिंग स्प्रिंगन हरदम कूदत रहा बोले मिनिस्टर वा फिया पी के बोले खाली बैतलांजा है बोले आउटलैंडिश हैगा stond hij al eerste op en ja, de minister is weer uit landen en bla bla bla. Abole ietsje juato op die apparekere he, bhaiya. Baufa, tab deko Brazilië ja hai, te hiya ja hai, te hua ja hai. Bole kai kai des ja, ab deko dodo dada ke tulun jano, bhaiya dada bole ala, kuli mus go na India. A dodo bole he, is sab NDP'er bhaiya bole he, dodo hal keihard uit naar regering Simon. Met deze mensen ga je het land niet kunnen ontwikkelen. Maar kijk toch hier, hele bhaiya jun. इस अब करी से भैया और एको बड़का माफिया ग्रुप पकड़ाने भैया तुलन जानो एक मिला लाश हुई गया रहा सूरीनाम देश में वो फिल्म आकर उकर बारे में तो दोस्तों आप लोग को यही कहते हैं कि हमारा समाचार यहां तक था सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम जा रहे हैं और आगे को दोस्तों और अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बाहर प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर देखती देखने शस्त्र का भीगा भीगा बदन और भीगा भीगा बदन और मेरा चंदन की तरह महकते हैं फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों आओ मिलकर हम सुना जाए

ओए ओए ओए मैं प्यासे हो गई। और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है। और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और प्यार में क्या क्या हो जाता है भैया, छोटी से ही मुलाकात में प्यार हो जा है और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है निखत होंदत और फिर शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं। और एक बार दोस्तों और प्रकाश और ये गाना है ओ राधा तेरी बिना, और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम, गोविंदा जुही चावला ने इसमें काम किया है। और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए, ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

से अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं, ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितनी पुराना ही गाना है उतने मजा उसमें है। हमारी प्यारी प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

कोई प्यार के देखे और जादू भरी दोस्तों। और आगे को बढ़ते हैं कि हैं और दोस्तों ये गाना जो अब हम चलाए जाते हैं ये भी एक पुराना ही गाना है, आई मेरे जिंदगी तू प्यार का सपना फिल्म के नाम है। नेकति होंद नेक ने शस्तक का लता जी इस गाना को गाया है। इस फिल्म में काम किया है विश्वाजीत और मालहा सिन्हा ने दोस्तों, और को अशोक कुमार भी इसमें काम किया है, जॉनी भी काम किया है ना हम जॉनी वॉलकर दोस्तों, हेलेन काम किया है और इसमें कितने लोग काम किया है, आओ मिलके सुना जाए ये कौन सा गाना है दोस्तों।

और खो गया जाने कहाँ जो है, ये एक पुराना गाना है दोस्तों, आओ मिलकर और सुना जाए इसमें क्या है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों।

और कमरिया करे लप्पा लोप और लोली पोप लागे है तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों की चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

ओ ये जो तेरी पायलों के छनछन है, आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में हम बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि आप पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान, आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बाबी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम मैं किदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रेलो आप लोग साथियों पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सभरा प्यार नमस्कार और सदा और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी इस्लाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोतागण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का प्रोग्राम मेदाग का ये हसीन प्रोग्राम सरनामी संगीत लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों या शमील लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो जिस हाल में हो घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार और प्रेम मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे एक शुभ शाम मैं थेल्फी लाइस्टर प्लेसीर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्टर इंटरनेट के लहर द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। सभी जानकारी अगर आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से कुछ ब्रॉडकास्ट ऐलान करना चाहते हो यार तो आप तार करें ये दो नंबर पर कंतोर 9 7 3 5 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Great Balance. से बिगड़े आप श्रोताओं ने 31 नंबर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके रोशिता बहन जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। इस तौर तरीके से रोशिता बहन जी सदियों से आप सभी को सेवा करती आ रही है। ये आशा उम्मीद है हमारी फुल टीम की तरफ से कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद रोशिता बहन जी, और आपको भी हमारे फूल टीम के तरफ से एक हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी वीकेंड। अगर आपके घर पे एक खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटी या तो एक बेटा ने जन्म लिया होगा, या किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो। जो भी जश्न आप सभी घर पे या तो कहाँ पे मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयाँ ही बधाइयाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को, आप सभी के जो नेक मनोकामना है, नेक इरादे, सभी पूर्ण होते जाए ना। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। आचार्य आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए, नित्य फुरखेत है, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहना, और हो सके तो थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में बातें शाते करते रहना। फनहर्त बीटर्स अब कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और हो सकता है कि आप आज कल या परसों कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता का कोई बात नहीं है। ब्रेफ खून दौर खाम दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ फर्ट्रॉव और जोर तोर से बढ़ाते रहना बंधु, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी दौड़ दौड़ कर आकर आपके कदमों को भी चूम सकते है। साथियों देखो, मेहनत तो है दौलत का यारी है, तथे वो तक ओवरऑल खलेट ताई सब स्कूल ऑफ योर वेयर नेवर गिव ब्रदर नंगा सीसा ससुर बिलो बियम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बिडंग्स फॉर हेट लेस्ट्रेन।
सुसाच्य प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ इस शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार 1927 कंपोज बाय ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह सभी को सुनाने को जा रहे हैं शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना इसीलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से

अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात तक चलेगा। तो स्टे ट्यून, आप ही का तो आवाज है। हैप्पी हैप्पी वीकेंड, हैप्पी हैप्पी संडे आप सभी को, और नीट फन उनसे सरनामी संगीत रफी साहब जी।

मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रवि साहब जी के मधुर आवाज में। तो साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूं, और जैसे मैं कह रहा हूं, जबरदस्त प्रोग्राम है, कुछ पुराने और कुछ नए सॉन्ग्स का मिक्स है। आज का इस हसीन शाम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूं हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार, उस्तादों का उस्ताद और बैठक गाना का महागुरु, द ग्रेट रॉबी उदित राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में। आप सुनिए चिट्ठिया लिख लिख।

Issues tado ka ustad or one surinam diska international kalakar the one and only maestro Robbie Uditram ji 15 minute guzarne wala hai 5 bajkar aur aap chun hai found hindustani radio par jor tod se sarnami sangeet aap sun rahe एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का जो अपने जीवन में काफी से ज्यादा मैं जाने दादा हेमंत कुमार के गाना भी गाता था। मैं एक बात कर रहा हूँ जबरदस्त गायक आईडियार सीफ तख्तख दवन डोली माएस्ट्रो श्री दत्त शिव नंदन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये अति सुंदर बयान सुनिए। हो ओ चोरी चोरी से मिलो।

Shabash, shabash, shabash. जबरदस्त गायक आई डी आर 70 80 सुरीनाम देश हॉलैंड देश का और जाने से ज्यादा दादा हेमंत कुमार के या गाने गाते थे श्रीमान श्रीदत्त शिवनंदन जी। 18 मिनट गुजर चुका है 5:00 रविवार का शाम का प्रोग्राम जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है यारो। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का इंटरनेशनल कलाकार और बैठक गाना का एक गुरु मां द ग्रेट बिजावती चैतू जी के ये सुपरहिट सॉन्ग तोरी मथुरा।

0: शाबाश मशहूर करने वाली हमारे सुरीनाम देश ऑल इंडीज का बैठक गाना का गुरु माँ ढवाने डोले बी जानवती जय तू जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप एक सुंदर बयान सुन रहे थे। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को साथियों, और इस बार एक मजेदार सॉन्ग है कि बहुत फेटफेती तू लोग ना करियो, ये कह रहा है उस्ताद रॉबी गोगार।
1: यहाँ का सुनीला घर में

शाबाश शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश और रॉटरडैम शहर का उस्ताद रॉबी गोगार जी का ये बिल्कुल मजेदार सॉन्ग शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान। और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का बखान ऑफ द ढोलक doorgegroeid met de bongo, harmonium en lead singer. Ustad ook alstaat, Shankar Chandra Bhosjika je bilkut medley bij te gana absunie. Old is gold.

शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का, द ग्रेट उस्तादों का उस्ताद, हुक ऑफ द ढोलक हारमोनियम संग, द वन एंड ओनली शंकर चंद्र बोस जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयाना श्रोताओं सुन रहे थे। 2 मिनट गुजर चुका है साथियों, 5:30 बजकर और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे दैन हाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट के लहरों द्वारा आप सुनिए फाहुन FM.NL पर। साथियों वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने कुछ कहावते, कुछ उदाहरण लिख कर चले गए हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं, काफी दिनों हुए और कुछ जीवित भी है। और ये बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ, ये यश उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते ही रहेंगे। तो जरूर आप गौर फरमाएं। अर्ज किया है पुराने जमाने का महाज्ञानी श्री ऑगस्टिनस, और ये कह रहा है कि द वर्ल्ड इज अ बुक, वी नीड रेस्ट लेस्ट एंकल इन ब्लड सेड। Een hele goeie hoor, eentje om te onthouden hè? Dus hij bedoelt daarmee, probeer links en rechts de hooise ghetto 1 of 2, 3 buitenlandjes te pakken. Mahagyani en de uitvinder van de atoombom, Sri Albert Einstein, Satyuki, ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen. Eens de leider van Engeland, Sri Winston Churchill, die trotse mensen verdwalen liever dan de weg te vragen. Begrijp je dat? Hè? Dus ga maar liever vragen dan verdwalen, maar omdat ze trots zijn, willen het ze zelf erachter komen. Ja, poetsle bhai, sneller maar. Een Russisch spreekwoord luidt als volgt, Satio, zelfs de dood krijgen we niet voor niets, want hij kost ons het leven. Een hele goede hoor. Nog eentje van grote uitvinder, de great Albert Einstein, ik ben een diep religieuze ongelovige. Dit is een enigszins nieuw religie. Marcus Cato, de oudere Nikahai Satyoki, wijzen leren meer van dwazen dan dwazen van wijzen. Onze eigen Bapu Sri Mahatma Gandhi ji Nikahai, mataon ke bare mein aroki, als ik als vrouw was geboren, zou ik een opstand ontketenen tegen elke pretentie bij de man die de vrouw beschouwt alsof zij geboren is om zijn speeltuig te zijn. Toon Hermans Nikahai Satyoki, te leven is een gunst. Te weten hoe is een kunst. Eentje van Jules Deelder. In Rotterdam verdienen ze het. In Den Haag verdelen ze het. En in Amsterdam smijten ze het over de balk. En de laatste van vanmiddag is een Chinees spreekwoord en luidt als volgt, Satyo, wie een boek voor de eerste keer leest, leert een vriend kennen. Wie het voor de tweede keer leest, ontmoet een oude vriend.
तो अभी आप लोग कुछ ज्ञान की बातें इसने खास करके यश अमीन लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं साथियों, 7 मिनट गुजर चुका है 5:30। अगला बयान एक मशहूर गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का सोमारी जगई जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाती है आप सभी को बंसुआ कटावे राजा दशरथ। एक अति सुंदर सोहर है, मिलके सुनते हैं। एंजॉय द म्यूजिक क्योंकि सरनामी संगीत है यारो, अपने लोग हैं।

ऐसे मशहूर गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का दिखाया जाए बसवा कटावे राजा दशरथ गाने वाली है सोमारी जगाई जी के ब्यूटीफुल आवाज में। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और घड़ी की तरफ देखता हूं साथियों, 17 मिनट रह गया है 6 बजने में। एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंड देश और सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार बन चुका है, सुजल उमराव जी का बिल्कुल

नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश और इंडिया का जबरदस्त गायक द ग्रेट सुजल उमराव जी का बिल्कुल नया सॉन्ग। धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है पहला अध्याय का जो लास्ट सॉन्ग है, लेकिन उससे पहले दो और सुना दूं। और ये बिल्कुल नया उस्तादों का उस्ताद एंड लायन बैठक गाना का जबरदस्त गायक द लायन ऑफ बैठक गाना द वन एंड ओनली मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग जो रिक्टिंग 230,000 व्यू के तरफ जा रहे हैं। अति सौखेलवात ओरिजिनल कॉम्पोजिशन 20 सेशन 20 या हमार मशीनिया भैया बोले दौ दो उसका भाव है अच्छा मोहित खैया अच्छा बेटा

से खाइए बेटा, हमार मशीनिया न्यू न्यू न्यू फ्रॉम द लायन ऑफ बैठक गाना उस्ताद का उस्ताद मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह सिवना जी का बिल्कुल नया सॉन्ग। 7 मिनट रह गया है साथियों 6 बजने में, और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान आप सुनिए एक भजन के रूप में। मैं 15 साल का था जो पहला बार ये नगमा को सुना उस तारों का उस्ताद हरी शिव बालक जी के ब्यूटीफुल आवाज में। तब से मैं सोचता था कि किसी दिन जरूर ये गाना को मैं निकालूंगा अपने आवाज में। तो मेरी आवाज में सुरेंद्र भगवान दीन जी की आवाज में आप सुनिए हे कृष्णा हे कान्हा। अरेंज एंड कंपोज बाय

0: क्या बात है, म्यूजिक तो जोर तोर से सुनाई दे रहा है, मेरा ही आवाज में यानी कि सुरेंद्र भगवान दीन जी के आवाज में आप ये अति सुंदर नया भजन सुना जो मैस्त्रु ज्वाला ने अपने अंदाज में कंपोज किया है। थैंक यू ब्रो। तो साथियों, 3 मिनट रह गया है 6 बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।
1: Den Haag. Waarom Hindustani Radio?

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 30 अगस्त 2026 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो वक्त जब मैं आ रहा था स्टूडियो के तरफ तो देहरादून का तापमान तकरीबन 22 और 23 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था। Het is heel bewolkt, vanmorgen had het een beetje geregend, maar nu is het wel droog. तो जहाँ प्रेमियो जिस साल में हो हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतीलक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रम। 3 मिनट गुजर चुका है 6:00 साथियों। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइश जरूरी खबरें इस तिहारे देन कन्फर्म ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी की फाइट सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑन देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल अटेंडेंस कंट्रोल उर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स फॉर इंफॉर्मेशन 07-363-2247। कंट्रोल का तार का नंबर है और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-363-2247। जो भी रेडियो का काम होना देन कन्फर्म हिंदुस्तानी रेडियो। इवेंट फ्रॉम हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोग के बारे में रेक्लाम बनाते रहना साथियों, थोड़ा बहुत चर्चा भी करते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोरा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के काम करते हैं और आप सभी सुनते हैं तो हम लोग भी रहते हैं, तो हम लोग के बारे में ज़रूर बातें शातें करते रहना अपने बिरमनवान से, अपने परिवार से, अपने कलीगों से। हम लोग यही चाहते कि जैसे आप लोग हम लोगों के प्रोग्राम सुनकर मजे ले रहे हैं, सभी के रिश्तेदारों को लिहाज और साथियों बिरमनवन भी हम लोगों के प्रोग्राम को सुने तो ज़रूर हम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत बातें शातें करते रहना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। En je hebt het al gehoord, hè? Afgelopen donderdag waren we live op de radio met onze karaoke team. 6 omroepers, waarvan 1 dame heeft meegedaan. En komende maand, elke laatste donderdag van de maand, gaan wij dan live karaoke voor u zingen. Het begint rond de 6:00 en het gaat door tot... maybe 8:00. Dus blijf luisteren en volg ons. To ABM Loka member bane. Aapko to dheer sara fayda hi fayda hai. Aur hum logo ka ye jo faun ka parivar hai na wo to badhte ja raha hai. To aap bhi aakar isme shamil ho jaye. Natuurlijk volg onze social media. Ook van onze karaoke team en van onze omroepers. Dan hoort u zeer zeker waar wij binnenkort voor u live gaan zingen. तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 07-365-2247 एंड फ्राग नार ऑनस टीम लीडर माएस्ट्रो जॉनी नंबर 1। मेस्टल वर्ती ऑटोमैटिक डोर वर्बंड नार हम टू। 7 मिनट गुजर चुका है साथियों, 6:00 रविवार का रात्रि का प्रोग्राम हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का जो

Sunder Bayan en Music Formatie uit de jaren 70, Now Joan Starska Super Hit Song. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त गायक आई डी आर 70-80 सुरीनाम देश हॉलैंडेस का मशहूर गायक द ग्रेट रूडी तांगली को लाते हैं प्रोग्राम में, और ये सुपर हिट सॉन्ग अलर तेड उन्हीं के ब्यूटीफुल आवाज में ये मिलन बड़ा प्यारा

Effort Green Song by Maestro Rudy Tangali. ये मिलन बड़ा प्यारा. 10 मिनट रह गया है 6:30 बजने में. अगला बयान जॉर्जिस्ट संगीतकार हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडेस का मैस्ट्रो हफीज खान वाहिद हुसैन जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और उन्हीं के मधुर आवाज में और उन्हीं का सजाया हुआ मस्ताना ऑर्केस्ट्रा के साथ और संगीत पर आप सुनिए कौन रंग मुंगवा.

कौन रंग मुआ जबरदस्त संगीतकार हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का है दे यार 70, 80, 90 डॉन एंड डोली मैस्ट्रो हफीज खान वाहिद हुसैन के ब्यूटीफुल आवाज में और उन्हीं के बनाया हुआ बैंड मस्ताना ऑर्केस्ट्रा का साज आप सुन रहे थे। 5 मिनट रह गया है साथियों 6:30 बजने में। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का देन हंक्शर का सिल्वा के माय द ग्रेट इंदिरा राम चरण जी ऑप्शन बेस्ट दिल में तुझे

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुन रहे थे, गाने वाले थी मशहूर गाने वाले आईडी यार 70-80-90 हॉलैंड देश श्रीनाम देश का डिग्रेड इंद्रा रामच रंजीत डोर गब्रोक में नंबर सिल्वा के माई 1980।

साथियों, एक मिनट गुजर चुका है, 6:30 वक्त हो गया है ना, कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारों की वो जब गुजरता है गलियों से तो महक सी आती है, उसे देखकर मेरी आंखें अक्सर शर्मा सी जाती है। उसकी बातों में गुरूर की आंखों में नूर दिखता है, उसकी बातों में गुरूर की आंखों में नूर दिखता है। कोई मेरी नजर से देखे वो सच में कोहिनूर लगता है। उनका नाम कहते कहते सुबह से शाम हो गई, उनसे मिलने की खुशी में नींदे भी हराम हो गई। हम दिल थाम कर चलते थे इश्क की गलियों में जनाब, हम तो दिल थाम कर चलते थे इश्क की गलियों में ऐ जनाब, जो देखा उनके एक नजर, जो देखा उन्हें एक नजर, एक ही जिंदगी थी जो अब उनके नाम हो गई।

मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कितना चाहते हो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कितना चाहते हो, मगर सुन लो हम बस तुम्हें ही चाहते हैं और अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। दुनिया में एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ, दुनिया में एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब हजारों लोग आपके खिलाफ हो, कि जब हजारों लोग आपके खिलाफ हो तो वो इंसान आपके साथ खड़ा हो। जो एक बार दिल में बस जाए, जो एक बार दिल में बस जाए उसका ख्याल मिटाया नहीं जाता, जो सांसों में महक जाए उसे भुलाया नहीं जाता। लोग कहते हैं मोहब्बत दोबारा भी हो जाती है, लोग तो कहते हैं मोहब्बत दोबारा भी हो जाती है, पर जो दोबारा हो जाए उसे मोहब्बत कहाँ नहीं जाता।

कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी तो इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं, नजर तुम आते हो। ये भी होता है, स्वार फरलिफ्ट है जिसे कहते हैं। तो ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अपना महान अनाउंसर साथी और हमारे कराओके टीम का गुरु लेयर मेस्टर धवन एंड ओनली मैस्टर चंद्रशैन गंगा जी को सुनिए। अन लिट आईडियार 75, toen was zijn stem nog ook heel jong hoor. Bekeraar hij jaren, sunane wala hij onze eigen maestro, de one and only Chandrasekhar Gangaji.

Hey यार, और गाने वाला था उनसे एक उस्तादों का उस्ताद महान अनाउंसर साथी और कोलीखा हम लोग का कराओक टीम का गुरु उनसे लेयर मेस्टर भैया चंद्र सिंह गंगा जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये इतनी सुंदर बयान आप सुन रहे थे जो यार फेफन सीफन तक का ओप नाम था। 17 मिनट बाकी है साथियों, 7 बजने में तो अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का जॉनी बच्चू को लाते प्रोग्राम में एड म्यूजिक फॉर्मासी दोस्ती ग्रुप। ढेर सारे जो बजवैयान म्यूजिशियन है उस जमाने का अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि कीबोर्ड और मांडोलिन बजाने वाला केसरी प्रसाद, महान तबला मास्टर ढोलक मास्टर कीबोर्ड प्लेयर क्रिस पूरन भी नहीं है इस दुनिया में। अन्नी फमै रेल ख्रोत बसिस्ट इवन आइवन राजकुमार बस एंड स्लग गिटार वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो मिल के सुनते हैं जबरदस्त शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान विद इंडियन सिलेक्शन। जिस दिन इस दुनिया से नफरत हितार पे रहा रेखी ललई, वो भी उस जमाने में बहुत ही मशहूर ऑन्डर वेस में था और साथ ही साथ जबरदस्त म्यूजिशियन लुशियन कल्लो सैक्सोफोन, राम भरोस है क्लारिनेट पर और जॉनी बच्चू जो ये गाना को गाया है उस जमाने में द लीडर था ऑफ द सीम क्लासिकल बैंड दोस्ती ग्रुप। तो मिल के सुनते हैं जिस दिन इस दुनिया से नफरत।

शाबाश मशहूर गाने वाला हमारे सुरीनाम देश का जॉनी बच्चू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर म्यान आप सुन रहे थे। 10 मिनट रह गया है साथियों, 7 बजने में अगला बयान एक और जबरदस्त गायक आईडीआर सही तख्तख सुरीनाम देश हॉलैंड देश का विजय बच्चा सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए बह अंखियों से धार।

Uit zamane jani de jaren 70, 80, 90 kamen Sjoer Ganewala uit Suriname, Nederland. Vijay Bachcha singt die ke beautiful amaz me, aap je die sunder bian sun rahe the. 6 minuten rahe gaya hai, 7 bajne mein to hamare dusra adhyay Sarnami Sangeet mein aap suniye aakhri bayan. और वो सुनाने वाला है हम लोगों का अपना जाना माना हुआ कॉलिक दवाने दौड़ी माएस्ट्रो अनिल सरजू जी के ब्यूटीफुल आवाज में. आप सुनिए दिल तुझे दिया था रखने को. म्यूजिक री अरेंजमेंट बाय माएस्ट्रो अशोक अयोध्या जी.

अपॉन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम अब श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ यार, तो 4 मिनट गुजरने वाला है 7:30 August 2026 सोमवार का यह प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतीलक बदंत फॉर एट लाइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे देंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत से नाम सर्विस ग्रांट योर क्वालिटी के साथ। आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, अब मात पर हम लोग बना करो, जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेल टेनिस कंतोर उर फन मार्ग तो फ्रेडर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंतोर 0 7 3 6 2 2 7 4 और स्टूडियो के तार का नंबर है 0 7 3 6 2 2 7 7। जो भी रेडियो का काम होना दें कंफाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना, रिक्लाम बनाते रहना साथियों, क्योंकि अगर आप सब हैं हम लोग के साथ तो हम लोग भी हैं ना, आकर अच्छे अच्छे प्रोग्राम रचा कर सजा कर आप सभी को सुना देते हैं। तो जरूर हम लोग के बारे में बातें शातें करते रहना है। ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी कोशिश करे बनाने को, क्योंकि आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। अफलोपरदाह को हम लोगों का कारा ओक टीम तो द्रिक्वार्थ आप सुने लाइव रेडियो पर हेल्प हुई रेस्पॉन्स लामदलक एंड ओक फन सुरीनाम आदव ओक हेल मोए रेस्पॉन्स। तो आप भी आकर हम लोग का इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनती जा रहा है ना, आप में आप भी उसमें आकर शामिल हो सकते हैं। Volg onze social media van de omroepers, ook van Faun Hindustani Radio. To aap zarur sunenge ki kahan par hum log binnenkort aap logo ke khatir live gaane ke liye tayar rahenge. To zarur aap aaiye, want u bent dan natuurlijk ook van harte welkom. To aap bhi jald se jald Faun Hindustani Radio ka member bane aur ko bhi banaye. आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें 0 7 3 6 2 2 7 4, want dan wordt hij automatisch doorverbonden naar onze teamleider, Don and Only Maestro Johnny Number One. तो आप भी आकर हमारे इस जो फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार है, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए, शामिल हो जाए, शामिल हो जाए। 7 मिनट गुजर चुका है साथियों, 7:00 कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स आप सुनिए। रंबा हो इन अ न्यू फ्रेश फ्रॉम द मूवी धुरंधर, रणवीर सिंह और शश्वत सचदेव का ये सुपर हिट मूवी, म्यूजिक डायरेक्टर क्या बात है, अपनी अंदाज में ये बप्पी लहरी का ओरिजिनल कंपोज किया हुआ सॉन्ग।

in een nieuw jasje gestoken. Je superhit song uit de jaren 90, Rembaho. Toen gecomponeerd door Papi Lehri aur Abki Bare Shashwat Sajdeo ke saaj hai aur Gane Wali Zamane ke Malkai Husne Malkai Sangeet the Great Madhubanti Bakshi ji ke beautiful awaaz mein. Agla bayan jabardast song hai Tauba Tauba Gane Wale hai Dikha Jai Karan औजला के ब्यूटीफुल नया सॉन्ग है उन्हीं का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान म्यूजिक अरेंज अंत कंपोज बाय द मैन हिमसेल्फ

क्या बात है, तौबा तौबा हुसन तेरा, तौबा तौबा। गाने वाला करण औजला, लेखक भी करण औजला है और प्रोड्यूस बाय बिग बैट बीट्स। अंत ये प्रूफ 17 मिनट गुजर चुका है, 7 बजकर साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अगला बयान दो घूंट, अति सुंदर बयान है, श्रुति रानी के आवाज में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान। म्यूजिक सजाया है आडी बर्मन जी और ये रिमिक्स सुनिए बॉम्बे राजा का।

0: तो जी हाँ साथियों, ढोक घूंट अति सुंदर बयान इस जमाने का जबरदस्त गाने वाली श्रुति रानी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुन रहे थे अति सुंदर बयान। ओरिजिनल कंपोजिंग बाय आरडी बर्मन, नया कंपोजिंग है इस जमाने का द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर कोहिनूर मुखर्जी। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि हमारे बात आशमी को सेवा करने वाला है जबरदस्त कुलीखा और हम लोगों का लेयर मेस्टर फानस कराओक टीम दवानंदोली चंद्रसेन गंगा जी बड़का भैया, वो भी स्टूडियो में आ चुका है। तो हमारे बाद जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। एस वेल अलेन वन भाई यूसेफ इस मोमेंटेल में फाकांसी वनर कौन थे आई गए पुट गाँव से और रातें इतनी मन्ना मिस्किन कौन था नौकर इन स्टूडियो और तकरती नौकर लातर हमें 21 मिनट गुजर चुका है साथियों सर है यानी 7:00 और रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अब जरा दिल को थाम लीजिए, जबरदस्त गायक इस जमाने का मैस्त्रो जुबिन नौटियाल जी को लाते प्रोग्राम में कंपोज अरेंज बाय आकाशदीप सेन गुप्ता और अल्फाजे है मुकुट सूर्यवंशी जी का, ऑल्सो अरेंज बाय अमन। इश्क मेरा क्या बात है, 45,456,641 keer al bekeken en beluisterd, is een groot compliment van deze maestro.
1: Dekhna, main ek din bahut bada singer banunga. Sari duniya mere gaane sunegi. Har jagah mere hoardings lage honge.
2: Phir to tu mujhe bhool jayega na?
1: Kabhi nahi. Tera aur mera saath sadiyon tak ka hai.

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल को छू लेने वाला, नगमा और सुनाने वाला था इस जमाने का जबरदस्त गायक फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द वन एंड ओनली मैस्ट्रो जुबिन नौटियाल जी। 4 मिनट बाकी है 7:30 बजने में साथियों, अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई गाने गा चुका है। Born in Pakistan, the man with the golden voice from Pakistan, Atif Aslam ji ko laate hai program mein. Shiraz Upal ka arrange kiya hua hai ati sundar bayan, together with Raj Ranjot, and lyrics hai Raj Ranjot ji ka Husn Ishq mein, the great Atif Aslam ji.

सुंदर बयान हम इश्क में, ग्रेट सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान मास्टरो अतीफ असलम, अरेंजर्स श्री राज उपाल, अल्फाजे राज रन योद। 3 मिनट गुजर चुका है 7:30 बजकर, यार तो कुछ आखिरी शेर सजाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अर्ज क्या है यारो, मिलने को तो दुनिया में कई चेहरे मिले, मिलने को तो दुनिया में कई चेहरे मिले, पर तुम सी मोहब्बत हम खुद से भी ना कर पाए। अनजान अपने आप से वो शख्स रह गए, अनजान अपने आप से वो शख्स रह गए, जिसने उम्र गुजार दी फुकट में औरों की फिक्र में। जिंदगी खर्च कर दी तुझे पाने की चाहत में, जिंदगी खर्च कर दी तुझे पाने की चाहत में, इससे बड़ी कीमत क्या होती है तेरे प्यार की। सोचने वाली बात है तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसकी होती है जो तकदीर लेकर आता है। कहां मिलती है खुशियां अपने जीवन में, हर कदम पर यहां राहों पे है गम पता। मेरी चाहत से तेरी दूसरी, मेरी चाहत से तेरी दूरी का ये आलम ही, ये ना हो पाया कि एक मोड़ पे हम तुम आते। आखिरी शेर आज के मेरे इसी के कार्यक्रम में साथियों, यारी का ये सिलसिला निभाइए रखना दोस्त, यारी का ये सिलसिला निभाइए रखना दोस्त, जान तो नहीं मांगेंगे आपसे, पर गुजारिश है कि जान के जाने तक दोस्ती बनाए रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये था कुछ आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है और लाते हैं इस जमाने का द क्वीन ऑफ मेलोडी फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, डॉन एंड ओनली श्रेया घोषाल जी को, और उनकी मधुर आवाज में आप सुनिए द सॉन्ग कल्याणी, रिटन एंड अरेंज बाय सुहास मोहिदीन, और कंपोज किया है केशव त्योहार। क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने की डिग्रेट श्रेया घोषाल, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये गाना जो जुलाई में निकाला गया था अब तक 130,08,021 keer al bekeken en beluisteren, dat is op zich een heel record, a great song special aap sabhi priye priye shrotaon ke naam।

मेलोडी श्रेया घोषाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये सुंदर बयान सुन रहे थे। कल यानी साथ दे रहा था सनिया इयापन। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे पाकिस्तान से, जो काफी नगमे गा चुके हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उस्ताद राहत फतेह अली खां और काविया लामाई के आवाजों में आप सुनिए अति सुंदर बयान। अल्फाज है अजय साहब जी का और म्यूजिक प्रोड्यूस अरेंज किया है पारस नाथ जी। मेरी सांसों में बसा है तू न्यू फैशन विद बुडापेस्ट सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा।

दिल को छू लेने वाला नगमा आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। महान गाने वाली इस जमाने का फ्रॉम पाकिस्तान, जो काफी बॉलीवुड सॉन्ग्स गा चुके हैं, राहत फतेह अली खान के ब्यूटीफुल आवाज में साथ दे रही थी काविया लेमाए, और साज था जबरदस्त बुडा पेस का जो सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा है उसी के साथ, और संगीत पर लाइव रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे। ये अति सुंदर बयान को कंपोज किया है श्री पारस अन्ना जी और लिखा है अजय शाहब जी, सात मिनट रह गया है साथियों 8 बजने में, देखा जाए तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने के। हमारे बाद आप सभी को सेवा करने वाला है दो जबरदस्त साथी हम लोगों का, कोई खास महान अनाउंसर साथी और गायक डवाने डवली भैया चंद्रसेन गंगा जी, मित भाई यूसेफ दी खान साम, हेड प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड फॉयली प्रेजेंटेरा, और इन दोनों के प्रोग्राम में आप जरूर तार करके अपना मन पसंद नगमा को गुजारिश फरमाइश कर सकते हैं। आप तार करें। तो ये तक था आज का मेरे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। ये शोमीर लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों की, जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये शोमीर है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ संगीतकारों का दास्तान नाम कार्यक्रम खलिंग में ओल्ड इज गोल्ड गीत और गजल। जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, मुझे आप सभी जरूर इजाजत दे। और जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूं आप सभी के याद में और आप सभी के लिए।

साथियों, जाते जाते कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ हमेशा की तरह, और आज भी कुछ धारा हेमंत कुमार के याद में।

0: मेरा वतन जापान, आप सुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में हमने पेश की। जैसे आप सबको पता है आज 27 तारीख अगस्त है, जी नहीं 27 नहीं 30 तारीख अगस्त है और आप तत्पर है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हृदय से स्वागत किया जा रहा है। भैया यूसुफ भी मेरे सामने बैठा हुआ है। भैया यूसुफ आप छुट्टी से आ गए हैं, बताओ यूसुफ का कल ब्रूर तू वक्ती वक्ती हाँ अब खोल ले तो माइक्रोफोन कैसे समझ आ रहा है तो फकांसी
1: सही लगा सब ठीक ठाक है भाई। फकांसी अभी बहुत मोई रहा, खूब खनित कर लिया हम लोग, मोई वेर रहा।
0: अच्छा टुक टुक पे घूम ले, सॉरी
1: टुक पे
0: घूम ले। मोई ऐ मोई नचे वेर बहन हम दो हफ्ता ना रहली। बहरहाल सुनने वाला श्रोताओं आपसे क्षमा मांगते हैं और लेकिन अब फिर आ गए हैं गीत गजल के कार्यक्रम लेकर जैसे आप सुने हैं। और आप तार कर सकते हैं नल से इफन तक गीत गजल के कार्यक्रम में आप तार कीजिए और कुछ कहावत हो कुछ नज्म हो भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, अगर ये आपको सुनाऊं तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब की आवाज़ में। जी हाँ बहुत प्यारा गज़ल है, गीत गज़ल के रात्रि तो लीजिए गीत गज़ल के का हम आपको सुनाते हैं गीत गज़ल का ये गीत।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला, आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रानी हूँ। जबकि आज गीत गजल के रात है, लाइव कार्यक्रम सोनदक देर तक खुशतस है और आप तत्पर है। हमने पेश की उपासना में से ये गीत को निकाल कर, तो चलिए पहला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है इर्सी जिला, इर्सी जी के लिए, इर्सिला जी के लिए, शुभकामना के साथ, रोतरदाम के रहने वाली हैं। तो इर्सिला जी, आपकी मांगी हुई गीत हमने प्लेयर पर रखे हैं, बस सिर्फ बटन दबाना ज़रूरी है। तो रोतरदाम के रहने वाली इर्सिला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, और इर्सिला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इर्सिला जी इस तरह से आ रहा है मांगी हुई गीत आपकी।

0: नजर बचाकर चले गए वो शंकर जय किशन के साज पर। गीत गजल के कार्यक्रम में हमने एक गीत पेश की और रवि साहब की आवाज़ में। हाँ, ये गीत पेश हुआ रोतरदाम के रहने वाली इर्शिला जी के लिए। इर्शिला जी, उम्मीद गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने मिल के चलाए। इर्शिला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। चलो देखते हैं को लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदरापन। हेलो हेलो
1: ओ हेलो तद बेया
0: दत फुफरा बेया कैसे रहले?
1: अरे अरे अच्छा अच्छा तू कैसे रहले?
0: बस चले धीरे धीरे बेया हुए
1: से। मोय मोय
0: तू प्रिया
1: हां हम सोची गाना ऑन ओ कर दे तनी से, ये तो गेरवा जोन खराब हो गए गनो न मोय लगी सूरत।
0: ना ना जोन गाना तू मंगी है ओके हम ऐसे ही जान डार देवे हम और यूसुफ की गनो मोय लगी तो की सुने।
1: अच्छा अच्छा
0: हो ही न सके है।
1: ओ अच्छा ओगो गनो में खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता
0: इतना ग्रेट गाना और तू बोले गाना ना मोय लगी सुने।
1: हां हां हां मैं बूढ़ा हुआ ताकत हुई।
0: सुन तू आंखें मूंद ली है बैठ गई है और गनवा पर कॉन्सेंट्रेट करिए तो सुनिए कितना विशाल गाना है। बोल तो
1: अच्छा
0: बेया एट उत्तराखंड और कौन गाना रहा बेया?
1: खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता
0: हूँ। खुदा भी आसमां से रीखल इतना काफी है। अच्छा भैया बताओ कोनो खसाखदा खुदा रख ले कि ना कि तू खाली काना में घर फेरफी करते रह गई ले
1: मुड़िया इन वार मार लास्ट टाइम था मुड़िया लाफ हो ये है
0: ना ही आज द्रुक बेस के मेरे में आंदर देंगे दन स्पेल आंदर देंगे सन रोल ये या
1: क्लैक द्रुक भी फकासी से
0: कान को भी रो कान को भी
1: या
0: खेफ नहीं भैया
1: टेलीफोन में मरू हमार बैठ गए
0: कुछ बोले
1: टेलीफोन नंबर मिट गए।
0: ओ मिट
1: गए पटा दिए बत्तियां।
0: ओ अच्छा इसको अंदर
1: अच्छा
0: नहीं प्रीमा
1: या
0: इसको बेया थैंक यू वेल
1: या इसको
0: रुस को तो है और तू बैठ जा बंक सेल पर एक कॉफी तबलक बना ले
1: या
0: और तू गनवा सुनिए
1: अब बैठ के रोबे
0: ना गनवा गनवा इतना भी साल गाना है कि नहीं ना सके तू रोई है
1: पर जो साइवेर अब बैठ के रोई ला
0: ना तो खोरदेन बन कर दे अधियार रही तो जनिए कि ओ तब बरखा ने दिखाई।
1: अच्छा अच्छा
0: यस गुड बरा भी थैंक यू
1: या फ्रूट एंड इधर है
0: सलेदून
1: जो मैं सुने है।
0: हां उसको
1: अच्छा शुभ रात्रि
0: या तुम की शुभ रात्रि भैया तो फॉर
1: अच्छा सक्सेस
0: सही ना थैंक
1: यू।
0: ये थी बेया जी इधर के रहने वाली। तो चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये एक करण सर चॉइस
2: बनाए जाते
0: इस तरह से।

मना दी जी और लता जी, जी हाँ मना दी जी और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं, ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ इस तरह से आ रहा है।

0: फिल्म जाल में से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर 1967 का ये फिल्म नहीं थी सीफ का ये फिल्म जाल हमने पेश की ओपर फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। जहाँ तक मेरा ख्याल है लाइन पर कोई है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो खुद राफत।
1: अस्सलाम वालेकुम, राम राम और आदाब और नमस्कार सत्क्रियाकार।
0: अरे वालेकुम अस्सलाम भैया, नमस्कार, कैसे समाचार है?
1: चले भाई, कैसे सब मोई?
0: बस चले धीरे धीरे, तू लोग के दुआ।
1: और दूसरा बुबू भी मोई?
0: हाँ सब अच्छा है,
1: मोई खुशी बात सुनने के
0: सब मजे में है। भैया मोहम्मद और कुछ नवा हाल?
1: हाँ एगो है गा,
0: बताओ।
1: हाँ पहले गनवा।
0: हाँ हाँ गनवा बोल दे, गनवा बोल दे।
1: हाँ गनवाएगा अली बाबा 40 चोर बनाए जा बिगाड़े जा मोहम्मद रफी गाय से।
0: अरे फल बिगाड़े जा अच्छा भैया मोहम्मद बताओ।
1: हाँ एगो है चलो ममता हो गई गलती आप माफ भी कर दो मुझे ये आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती है।
0: वाह क्या बात है मोई,
1: माइके बोले तो माइके माफी मांगे तो
0: या नहीं क्लॉक निर्दात। और एक को रहा
1: ना खाली एगो पहली छोटा छोटा आवाज
0: लगा ना तो धल्ले रहिए तो एक बार आई कथी
1: नाम लिखी लगा भोपाल तो मां तो जाने भोपाल छोटा या तो बरका आएगा और तो जाने वहां बिचाई दिख रहे और के साथ मने भी फोन कर दे सर तब मिसाल छोटा आवाज खोज जिला
0: नहीं खुद दान है प्रॉब्लम। भैया मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद
1: हम और जरवाएगा सब सुनने वाले के लिए और नकिल के खातिर भी। अच्छा
0: आतांग सो
1: अच्छा भाई
0: ए ब्रो ऐसे ही रही।
1: अच्छा राम राम
0: जय सियार फेना फंत ये था श्रीमान मोहम्मद जनाब मोहम्मद जना के रहने वाला और भैया मोहम्मद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो देखो तो हाँ हाँ चलो वो गीत चला देते हैं और वो गीत है इबन बेरुख के रहने वाली माशुका सीला जी के लिए। इबन बेरुख के रहने वाली माशुका सीला जी के लिए शुभकामना के साथ अपने माशु के लिए जो मेरे सामने बैठा हुआ है प्रेम पूर्वक चश्मा लगाकर टोपी पहनकर और बहुत बहुत धन्यवाद सीला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सीला जी। आपकी मांगी हुई गीत हम लोग पेश कर रहे हैं, इस तरह से आ रहा है शुभकामना के साथ सीला जी के लिए।

तिम तिम तिम तारों के दीप जले। लता जी और तलत साहब ने मिलकर आपको सुनाए हैं फिल्म मौसी में से निकाल कर हमने पेश की भरत व्यास के लिखे हुए गीत और वसंत देसाई के साज ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो गीत गजल के कार्यक्रम में, जबकि ये गीत चलवाने वाली थी इपन बेरो के रहने वाली शीला जी, माशुका शीला जी की तरफ से। उनके माशुक जो मेरे सामने बैठा हुआ है भैया यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, शीला जी और यूसुफ जी दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त लाइन फ्री है, आप तार कर सकते हैं 0735567 40 या तो 0735267 77। कभी कभी कोई कहता है हम बहुत जल्दी तार के नंबर बोल देते हैं, अच्छा चलो एक बार फिर दोहरा देते हैं 0735627 47 या तो 0735627 77। हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, इस तरह से आ रहा है और वो ये गीत

0: फूल तुम्हें भेजा है खत में, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं। ये गीत हमने पेश की सरस्वती चंद्रा में से निकाल कर। घड़ी पर देखूँ तो 5 मिनट बाकी है 9 बजे में। जी हाँ, 5 मिनट 4 नहीं खत। चलिए यहाँ से पेश करते विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हम लोग फिर वापस आ रहे हैं। भैया यू सब ऐसे ही ना, बस हम यूं गए और यूं आए।
1: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

शंकर जय किशन के साज पर फिल्म धरती में से निकाले हैं रफ़ी साहब के गीत, और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गज़ल के कार्यक्रम में। जी हाँ, सौंदर्य दर्द खुशी खुशी के कार्यक्रम में और गीत के पेश करवाने वाली थी इतरा के रहने वाली बेया जी। बेया जी, उम्मीद गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की है वही गीत हम लोगों ने पेश की है फिल्म धरती में से निकाल कर। बेया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं और वो इस तरह से है। हाँ, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चलो सुनते हैं मुकेश के ऊपर कितना आपत्ति आया है। जी हाँ, चलो मिलके सुनते हैं।

तुमसे प्यार करता हूँ ये मज़ेदार गीत हमने पेश की, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा, रात्रि का वक्त है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देन हाँ के रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए। भैया मोहम्मद, शुभकामना के साथ आपके लिए गीत चलाया जा रहा है। ये गीत आप मांग रहे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और साथ ही साथ हम लोगों के लिए, तो सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद दे रहे हैं और पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। तो भैया मोहम्मद, शुभकामना के साथ चलिए आपके लिए गीत हम पेश कर रहे हैं। अली बाबा और 40 शोर निगनी सस्त को 1966 का ये गीत है। देखते हैं हैं हाँ, उषा खन्ना के साज पर, वाह क्या बात है, उषा खन्ना के साज पर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था। हाँ
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: हाँ? किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए।

0: उषा खन्ना के साज पर रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं, बनाए जा बिगाड़े जा, बिगाड़े जा बनाए जा। और फिल्म अलीबाबा 40 चोर का यह फिल्म है, ये देखती सस्तक 1966 का ये गीत। और चला वो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम, जबकि दाना के रहने वाला श्रीमान मोहम्मद जनाब मोहम्मद जी ने तार किया। मोहम्मद जी के लिए शुभकामना के साथ ये गीत पेश हुआ। और जनाब मोहम्मद ये गीत मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और साथ ही साथ फाउन के हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए शुभकामना के साथ। दोनों की तरफ से भैया मोहम्मद को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है लाइन पर कोई है भैया यूसुफ, ठीक है भैया यूसुफ, ठीक है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को। हेलो हेलो हेलो हेलो,
1: हम कुछ ना सुनी ला,
0: कुछ ना सुने कैसे हो सके है?
1: अब नहीं कमती।
0: हेलो
1: या
0: एक और ये भैया।
1: हाँ हेलो,
0: कैसे रह ले?
1: ओ चले है चले है, गिरत फिरत
0: गिरत न तो खाली फिरत चलिए, गिरत न चलिए।
1: ये वाल उधर दम हाथ कम तो मैं खबरी के
0: तो बहुत ख्याल करे उधर दम के। सुन ना भैया, उधर दम तो के ख्याल करे है तो तू का करे ओके ख्याल करे है।
1: ओके ना ख्याल करीला, मैं पीछा ना छोरे तो हम का करी।
0: ना ना ना ना तब तेरा पीछा ना छोड़ूंगा मैं।
1: प्रसीद वही साथी है, अब के तो साथी है, जवान जवान सब तो अपन अपन रास्ता होएगे, अब कोई ना तोर पीछे, अब वही साथी बा, वही एनक साथी दोस्त वही के पकड़े रहल जाए।
0: एक साथी तेरा बड़ा
1: या तो हाँ, और के अब के साथी दे जाने, सब बोले है बुढ़ापा में खाली वही लाठी तोर साथी है। हाँ कोई ना
0: देख तू रहम कर दे, लाठी तोर साथी है।
1: हाँ ना बेटी बेटा सब के अपन अपन लेफ है, सब माई बाप के कब कहाँ कहाँ जाए संहारे,
0: तो
1: वो सब के अपन अपन लेफ दे, हम लोग अपन लाठी लेके चल जाए।
0: मोई मोई
1: जिसने हम दे बढ़िया लाठी रहे तो बढ़िया चलाई।
0: तुम कोनो दिन जब हम सुनी ब्लॉकर में लाठी मिले ना
1: या तो बढ़िया वाला बढ़िया लाठी जन तो के बढ़िया से सेवा करी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: दाते सब तो हाँ बढ़िया लाती रही तो बढ़िया जरूर चली। या तो तू सबके बढ़िया लाती है,
0: जितना दिन के लिखल है जितना दिन के लिखल है जी के रहे कोई।
1: प्रसीस,
0: चाहे प्रसीस, एक गोड़ से चाहे दुई गोड़ से चाहे अढ़ाई गोड़ से।
1: या प्रसीस या मत तो तू देखिए हम यूट्यूब पर ताके ऐसा हेल फिर आउदर इंचेस होंदे फिर यार खोवाद इंचेस होंदे सो फिर यार खोवाद।
0: बताओ कौन सी कुछ धल ले है, दारू पानी
1: कौन सी धल ली है? एक क्या फेल एक फेल खराब पक्ष एक उतनी तो ना हेल्प नीड फॉर आल पत्नियां मरसों मख पत्नियां से सब बोले हैं दुनिया के हर पत्नियां चाहते हैं कि उनकी पति उस पर मरे। मना सब लिखल है दुनिया के हर पत्नियां मना हर है, और जब मरते हैं तब बोलते हैं जाकर कहीं और मरो और और जब कहीं जाकर मरते हैं तो बोलते हैं कहाँ मर गए थे।
0: हाँ वो भी बोले हैं।
1: सो इस तो
0: या
1: सो इस दूसरे तो सेल खरापक देते ना मैं या खुद ना तो सने इस खरापक
0: ना दत्त भी तो क्यों है
1: कहाँ मर गए थे
0: बोले छोकरा कहाँ मर गया था
1: सो प्राप्त से है। मदद इसके मोये तेरम
0: हो नहीं सही करनी थी
1: नहीं
0: हम लोग ना गवंती रह लियो
1: नहीं हम लोग तो कभी सब चीज ना बची आए
0: हम लोग मारे के बाद हम लोग यही बोई कहां रह ले रहे
1: हां प्रसीज हां कहां चल गए
0: हम कब से तो क्या गोरिल्ला
1: प्रसीज मां कभी हम लोग ना बोले मैं इंडिया में ये सब इतालवा बहुत खबराई करे इंडियंस
0: नहीं
1: बैगन सुतरा साइड से खदा
0: भैया कुछ धल्ले और
1: एक हाथ ना कौन क्लाइन है
0: हां गो है
1: जिसने वह को पैदा किया जिसने वह को पैदा किया तुम उसे वह देकर देखो वो तुम्हारा वह भी बदल दे
0: वाह क्या बात है शाबाश
1: या
0: भैया बताओ कौन गाना मांग रहे हो तू आज
1: हर रिश्ता इतने सिद्धार्थ से निभाते हैं हर रिश्ता इतने सिद्धार्थ से निभाते हैं क्या आखिरी में खुद अकेले रह जाता है
0: वो भी हो भैया अब बताओ
1: या वेलकम लीच हाते एक हाथन हेल नी वो लीच हम ना जाने फेलो मेलो में है कि ना है वन दिनस किंग सुक योसेफ तेरी आँखों में
0: वो तेरी आँखों
1: तेरा जहान
0: तेरी आँखों में
1: तेरा जहान या ऐसा नी वो लीच
0: तेरा
1: वो फिल्म कैमरान फिल्म ना लिखल है
0: तेरी आंखों में तेरा जहान इसको जान
1: तेरी आंखों में तेरा जहान
0: मिल जाए
1: स्टार्टिंग फिल्म
0: ओके
1: सनी वाली चीज बट वो नोट हो रहा
0: ओके
1: लम देख ला तो ड्राइव वो हो रहा ना नोट
0: ओके काम हम भी सुना
1: या इसे सुका
0: ओके भैया थैंक यू वेल
1: या थैंक यू वेल
0: Heel veel luisterplezier.
1: Ja, dankjewel.
0: En tot Zeker. De volgende keer weer, ja.
1: En bedankt ook. Fijne avond.
0: Jij ook, dankjewel.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag, doei, doei.
1: Ja, dag.
0: ये थी बेया गुजरात जी देनहा के रहने वाली तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं रफ़ी साहब का ये गीत क्या ख्याल है जी नहीं रफ़ी साहब के गीत से पहले चलिए हम आपको सुनाते हैं बप्पी लहरी के साज पर ये गीत

बप्पी लहरी के साथ पर बप्पी लहरी खुद अपनी आवाज़ में आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत और फिल्म है सत्यमेव जयते। चलिए 9:30 का वक्त है, 3:30 है, तो अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मेरे सामने बैठा हुआ आईपन बेरो के रहने वाला हमारा शीला जी का माशूक यूसेफ की तरफ से शीला जी के लिए, माशूका शीला जी के लिए आईपन बेरो के रहने वाली हैं, तो लीजिए यूसेफ की तरफ से शीला के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए यूसेफ माशूका के लिए।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये शानदार गीत पेश हुआ ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो, और पेश करवाने वाला था इबन बेरो के रहने वाला जनाब यूसुफ यानी माशूक यूसुफ। अपने माशूका जी इबन बेरो में बैठी हुई है। माशूका सीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं। एक अनासुर चॉइस, जी हाँ, ये रफ़ी साहब की एक अनासुर चॉइस है, इसे सुनिए। ये नहीं, ये लता, रफी साहब से पहले लता जी की सुनिए।

लता जी आपको सुनाएं फिल्म निराला में से निकाले हैं नेगतीन फैफ्थ का ये गीत है, 1950 का ये गीत है, चितलकर रामचंद्र के साज पर हमने पेश की ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत और वो है देखते हैं दनाक, दनाक के रहने वाली बेया जी, बेया गजराज जी, बेया जी आपकी गीत हम लोगों को, आपका गीत हम लोगों को मिल चुका है, तो चलिए हम प्लेयर में रख देते हैं, सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत है। बेया जी, बेया जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा दनहा के रहने वाली बेया जी के लिए।

तेरी आंखों में मेरा जहां। और ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, हमने पेश की गीत गज़ल के कार्यक्रम में, जबकि आज सौंदर देर तक खुश से दना के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया जी, उम्मीद गीत आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक शुभ रात्रि भेजा जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। बेया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

आँखों में तेरी याद लिए जा रहा हूँ मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए फिल्म है हमारी याद आएगी और म्यूजिक डायरेक्टर है स्नेह भटकार के साज पर हम ये गीत आपको सुनाए गीत गज़ल के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ी सी ये गीत आपको और सुना सकूँगा।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आज हम आप लोग को कुछ तख्तक निकंतक का गीत सुनाएंगे। आओ मिलकर सुना जाए कौन सा गीत है दोस्तों, और प्यार भरी गीतों का भान प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं।

और तेरी जान मैं बन जाऊं, कुछ दर्द भरी शायर भी आठ लोग को बीच बीच में हम सुना देंगे दोस्तों, कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते हैं। पास छटक वो रहे दर्द तब मन्ना रहता है, पास जब तक वो रहते दर्द जो है तमन्ना रहता है। फायदा या दोस्तों जता है फिर एक आंख की काजल की तरह। और दोस्तों हम चलते हैं तुझको देखा तुझको चाहा, और अगर जब तुझको देखा है तुझको चाहा है तो बीच में और क्या होता है, और तो कुछ नहीं हो सकता है ना।

देखा तुझे चाहा, परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है। फिल्म के नाम है छोटी सी मुलाकात। छोटी की मुलाकात के बाद में हम चलते हैं कुछ बेवफाई शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे कि फूल के साथ कांटा भी नसीब होता है, फूल के साथ कांटा भी नसीब होता है, खुशी के साथ गम भी नसीब होता है। मजबूरी ही ले डूबी है और आशिक को, मजबूरी ही ले डूबी है आशिक को, वरना खुशी से बेवफा कौन होता है। हमारे यारो तो हम चलती हैं बाहर आने तक क्या होगी, बाहर आने तक क्या होगी, अनुराधा पौडवाल की ओर हम बढ़ते हैं।

सनम, तुझे कितना भी चाहू और मोहब्बत इनायत कर्म दिखते हैं, तो उसके बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो मोहब्बत में तीसरा होता है, ये जो मोहब्बत में तीसरा होता है, मुझे उस तीसरे से नफरत है दोस्तों, कि तेरे पास आका मेरा, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। पद्माश्री मोहम्मद रफी आशा जी का गाया हुआ सॉन्ग इस फिल्म में माला सिन्हा धर्मेंद्र ने काम किया है। और आकर सब कुछ मिलकर, सब लोग मिलकर इस गीत को और सुना जाए। उस फिल्म में न सिर्फ माला सिन्हा धर्मेंद्र काम के, महमूद जी भी काम किया है और कितने लोग काम के। सुपरहिट फिल्म 1957 का ये गीत है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

तेरे पास आकर मेरा वक्त और वो तो गुजर जाता है कि कहते हैं जिंदगी में प्यार का पौधा लगाना सबसे जिंदगी में प्यार का पौधा लगाना लगाने से पहले जमीन को परख लेना क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में बेवफा नहीं होती है। जिंदगी में प्यार की पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना क्योंकि हर मिट्टी के फितरत में वफा नहीं है। हमारे यारो ती चलते हैं और आगे को एक सॉन्ग लेकर कि भरी दुनिया में आखिर दिल होता है पद्माश्री रफी जी का आवाज में इस फिल्म में आशा परीख मनोज कुमार ने काम किया है।

और बड़ी दुनिया में आखिर दिल, और अगली दुनिया में आखिर दिल पर माशी रफी जी का सॉन्ग ये गीत था हमारे यारो। और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, तो चलते हैं आओ मिल जाएं। फिल्म के नाम है प्रीत, प्रेम गीत की ओर है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम गीत की ओर है कि तेरे बेवफाई के गम नहीं, मगर तू बेवफा है ये दुख भी कम नहीं। बहते है तेरी बेवफाई का गम नहीं, मगर तू बेवफा है ये दुख भी कम नहीं है। ये कभी कभी लोग बेवफाई करते हैं दोस्तों, तो दिल जो है वो बहुत टूट जाता है। और जिसको दिल टूट जाता है उसको जोड़ने में बहुत दिन लगता है। उसको कोई दवा दारू ठीक नहीं कर सकता है। अगर तो दिल को ठीक करना है तो उसको प्यार जो है, जो प्यार है वो प्यार को फिर से वापस लाना है, फिर वो प्यार को जगाना है। उस प्यार को, उस दिल को, उस भरोसा देना है कि दिल अब तुम्हारा हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ये दिल के बात है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल की ओर।

और आओ मिल जाए हम दोनों। फिल्म प्रेम गीत का ये सॉन्ग है जगदीप सिंह अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ सॉन्ग है दोस्तों। तो कभी कभी दर्द भरी शायरी होता है, जब किसी को दिल टूट जाता है तो जुड़ने में बहुत दिन लगता है कि कहते हैं मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी ये है, मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी ये है कि भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रहती है, भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रह जाती है दोस्तों। कभी कभी कि लोग कहते हैं भी देख कुछ महसूस नहीं होता, लोग कहते हैं बिन देखे कुछ महसूस नहीं होता, हम तो बिन देखे यूं ही हर पल हर लम्हे महसूस करता हूं कि बेखुदी में सनम रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग आपको हम सुनाते हैं।

और बेखुदी में जो सनम उड़ गए। और दोस्तों ये एक रोमांटिक सॉन्ग फुल सॉन्ग थे दोस्तों। और इसके बाद हम करते हैं जाते हैं कि कहते हैं क्या कहते हैं मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी आप तो जानते हैं दोस्तों, ये है कि भरोसा किसी यानी भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रह जाती है। तो और इसके बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग के ओर हम जाते हैं हमारे दोस्तों। है कि कभी कभी यह रात को जो लोग सो नहीं पाते हैं तो उसको वजह क्या होता है, इस गीत से आपको मिलेगी।

0: और आप की कसम किशोर जी और नैतिकेल लता जी का ये सॉन्ग है, ये अगर रात को आपको नींद नहीं आती है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्यार में कभी नींद भी नहीं आती है कि आसमान का चांद, आसमान का जो चांद है, आसमान का चांद तेरी बाहों में हो, तुझ जो तुझो तुझो चाहे तो रहो में हो, तुझको चाहे तो तेरी राहों में हो, हर वो कड़वट हो पूरा जो तेरी आंखों में हो। तो दोस्तों ये कुछ प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम यहां से है, और ये गीत जो है ये गीत हम मेरे ख्याल से हम पहला बार इसको चला रहे हैं। सॉन्ग के नाम है बूम बूम भोले, फिल्म के नाम है तारी जमी पर।
1: अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकना का हुकु बुकु रे टुकु बुकु रे चकला का बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम जगड़ दुम चिकी चक चो।
2: <शुछ। laughs>

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

मंच का सॉन्ग है और ये है फिल्म के नाम है मिस मिस मेरी की ओर हम जाते हैं।

0: to enjoy ever.
1: और रात के मुसाफिर चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे. हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशिया बहुत मस्त था ना. तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं. तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर क्या हो गया क्या नहीं होगा तो आओ चला जाए. और वो है आजा सनम.

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएंगे लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिन बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाचिके लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

ये मर्द बड़ी दिल जर्द बरी नच जे लता जी परमान श्री मोहम्मद रफी मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि

मोहब्बत आज भी बरकरार है, क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है।

मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग की ओर और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं और मूवी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों। तो आप लोग को चलो मैथ मुकेश की आवाज में

Out the heart of the millions, Mukesh. मूवी का नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी की मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे, क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर, मूवी के नाम है तकदीर, और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है, लेकिन यहां कुछ और बात है। परमा श्री मोहम्मद रफीर का

मुझे दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल मेरे पीछे बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो बोलो

औरे राम बोलो, बोतल में बंद जवानी फरमान श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरी गीतों आपको हम सुनाते हैं, तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर, और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत, जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में, और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

और जब दिन हसीन दिल हो जवान पद्मा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी होए हम भी है तो कुछ प्यार के बात करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टैंड 1958 का पद्माश्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

तो चले आओ, तो इसके बाद हम चलते और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है, तो ये हम आपको सुनाते। किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इष्ट, जो किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वाल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मोफी का नाम है, मोफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती जितले जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जेल लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

0: तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नतीजे लता फरमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूवी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं आओ फिर प्यार करें। इसे कुछ लिखा है दोस्तों और
1: आओ प्यार करो
0: यहां पर लिखा है, तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

और ओल्ड इन गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिने तमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

और दो लफ्जों की है ये कहानी, मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिने तमन इस फिल्म में काम किया है, गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों। और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा, आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुवारे।
1: कहाँ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, ओल्ड इन गोल्ड का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे, तो यहां पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड एज गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बहार प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए, ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा, अथवा सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर
1: न जाए।
0: नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी कसम लौट
0: हेमंत कुमार।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम, मस्त महीना, नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए, हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर।

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेलकम कलर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

0: और उजले उजले बाल लाल टोपी।
1: तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तू धरती पे चाहे यहां भी रहोगे, चाहे श्रीनाम में रहोगे या जहां भी रहोगे, तेरे धड़कन से पहचान लूंगा अलका याग्नि कुमार शानू का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग थे। और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

तुम बदल न जाना मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानु राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी के नाम है यहाँ पर बताई गई है इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पर्सन दो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ ही साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खतक हिट सॉन्ग है गोविंदा जी, इसमें क्या करते भैया किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहां सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए हैं ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही दार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन 1900 और ये है मोफी। मोफी मोफी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आप सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग, सुपर हिट फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे। पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

और लता जी और तलत महमूद का ये शिपर जोंग थे। 7000 किशोर दादा क्या सुनाते हैं एक डुएट के ओर हम लोग आज चला जाए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नाइटिंगेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।